0: एनसीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम मदीना के साथ है संध्या। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। सैन्य रामसामी, जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी। मॉरिशस में 16वां गोप्यू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल 11 सितंबर से अब 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। विदेश में पाकिस्तान में सेना का प्रभाव केवल देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब पाकिस्तानी आर्मी सरकारी संपत्तियों, रियल एस्टेट और कानूनी व्यवस्था पर भी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लग्जरी सेलिंग क्लबों से लेकर असैधानिक कब्जे वाली जमीनों तक पाकिस्तानी सेना देश के अहम संसाधनों पर अपने अधिकार को लगातार मजबूत कर रही है। और अंत में मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की तरफ से पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। साथ ही मस्करीन समेत पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। दोपहर बाद के समय भी ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और अन्य जगहों पर बादल घिरे रहेंगे। रात्रि के समय भी बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल पार्टों पर हल्की वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल पार्टों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर सुबह के समय। सूर्योदय 6:09 पर और सूर्यास्त शाम के 6:03।
2: Continuous music.

इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की तरफ से रसूल आखिरी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उन पर पाकिज़ा औराक यानी कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं। बहवाला सूरा अल-बय्यिना, सूरा अल-कहफ़ उर्दू तर्जुमा, इरशाद बारी ताला है और आप वो कलाम पढ़ कर सुनाएं जो आपके रब की किताब में से आपकी तरफ वही किया गया है, उसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं और आप उसके सिवा हरगिज़ कोई जाए पनाह नहीं पाएंगे।

सूरह अत-तलाक उर्दू तर्जुमा इरशादी बारी ताला है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा है जो तुम पर अल्लाह की वाज़ह आयात पढ़कर सुनाते हैं ताकि उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक आमाल करते हैं तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और नेक अमल करता है वो उसे उन जन्नतियों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें रवा हैं और वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। बेशक अल्लाह ने उसके लिए नहायत उम्दा रिस्क तैयार कर

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3.

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

बोलो, हृदय थी प्रभु नु नाम बोलो, दुखो बधा दूर थाशे, प्रेम थी राधा श्याम बोलो।

ए अखिल ब्रह्मांड नु सर्जन संचालन अने पालन करनारी शक्ति स्वरूपा माँ छे, जेने श्रद्धा जगत ना लोको जगदम्बा कहे छे। ए सर्वव्यापक माए आखे आखा आकाश नु जे ओढ़ू ओढ़ू छे ने, ए ओढ़ू एटले ज आ भेळियो।

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओ, सादर अभिवादन। श्रोताओ, सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश को विश्व में सारे भक्त जानते हैं व श्रद्धा से उनका नमन करते हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। वे शीघ्र प्रसन्न हो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और सारे विघ्नों को दूर करते हैं।

श्रोताओं, भारतीय हिंदू संस्कृति में पंच देवों और उनमें भगवान श्री गणेश का अत्यधिक महत्व है। हिंदू समाज में कोई भी विशेष कार्य श्री गणेश की पूजा अर्चना के बिना नहीं होता। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है।

श्रोताओ, गणेश जी सर्व मंगल की कामना हेतु सर्वजन में प्रिय हैं और अन्य देवों की अपेक्षा अधिक पूज्य और वंदनीय है। प्रत्येक कार्य को मंगलमय एवं परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से आरंभ में श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है। गणपति बप्पा पूजा उपासना से प्रसन्न होकर आशीष देते हैं, कृपा व कल्याण करते हैं।

श्रोताओ, जो व्यक्ति विद्यारंभ के अवसर पर विवाह के समय नगर अथवा नवनिर्मित भवन में प्रवेश करते समय यात्रा आदि में कहीं बाहर जाते समय संग्राम के अवसर पर अथवा किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय यदि श्री गणेश के नामों का स्मरण किया जाता है तो उनके उद्देश्य में पूर्ति होती है अथवा मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता।

श्रोताओ, भगवान गणेश का एक स्वरूप एक दंत का है। भगवान एक दंत की प्रतिमा स्थापित करने से घर में क्लेश का हरण होता है, सुख शांति का वातावरण बना रहता है, पारिवारिक सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है और उनके मस्तिष्क में सुविचार आते हैं, जिसके कारण वातावरण सौहार्द पूर्ण बना रहता है।

श्रोताओं, विघ्नहर्ता विनायक गणपति के 8 अवतार हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण।

इस प्रतिमा के स्थापित होने से घर में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न होता है। भागवत प्रेम की ओर पारिवारिक सदस्य उन्मुख होते हैं। गजानन का तो अर्थ ही होता है हाथी जैसे मुखाकृति आकृति वाला। गजमुख के प्रत्येक विशेषता हमें शांत धैर्य धारण कर गहन विश्लेषण के उपरांत ही कर्मरत होने का संदेश देती है। श्रोताओं, इन दिनों गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं। आइए भगवान गणेश का स्वागत अपने अपने घरों में श्रद्धा प्रेम और भक्ति से करें। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने शगुन मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शगुन द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मिशन सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम भी उठाएगी। मॉरिशस में 16वां गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूलक के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। सनहाम सामी जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी। हमारी विरासत को बहुत देर होने से पहले बचाना, यही सरकार का मकसद है। सरकार नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसे मार्च 2027 तक संसद में पेश किया जाएगा। कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्री महेंद्र गोंदिया का कहना है कि विरासत की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा ताकि नुकसान पूरी तरह होने से पहले ही कदम उठाया जा सके और खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, समय के साथ हो रही खराबी और तोड़फोड़ से ऐतिहासिक धरोहरों को होने वाले नुकसान को रोकने पर ध्यान दिया जाएगा। विदेश में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, लेकिन इस समय इस समूह की अगुवाई करना भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफ़ी जटिल है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के करीब 2 महीने बाद ही अमेरिका और इसराइल ने ब्रिक्स सदस्य ईरान पर हमला कर दिया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। टैगोलेन लाफ्लोरा में 61 साल की 61 years old की श्रीमती प्रमीला कालीचंद जो आदुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ थी आज सुबह तीन बजे उनके भतीजे श्री शिव कुमार विष्णुदत्त प्रसाद के घर टैगोलेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबुआ की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM।

0: Monsalmant Constance Post de Flakmi, Monsalmant Constance Post de Flakmi, Basat Sal, Ke, 62 years old, Ke, Shri Atma Pabu, Shri Atma Pabu, जो प्रभु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज इनके ढाई बजे आज इनके ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनीसा प्रभु के घर मोसलमान कॉन्स्टांस पोस्ट द फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंतिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM टीबीएस लेन विच मिल ट्रियोले में ऐसे ये शोक समाचार हमने पढ़ ली है कौलाबू मोताइलोंग में Quand la voix monte à Elongmi, une ancienne salle qui est 79 years old, qui est Kanaya Gaujo, Shri Kanaya Gaujo, जो जगदेव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे आज दिन के ढाई बजे उनके घर कौलाबू मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM Quatre beaux roads, bon accueil, me. Quatre beaux roads, bon accueil, me. Satavan Sal, qui 57 years old, qui Shri Chitranjun Madhu, Shri Chitranjun Madhu, Jo Raju Marchand Roti Nam, si Zada Janijati, take me to Hugin Kirtikal, Ravivar Koka, Ravivar Kodin Kigyarabaji, Dinki Yarabaji, Unkigher, quatre beaux. Road, bon accueil, c'est Otakar, intim sanskar kilié. L'aventure qui chmachan brûlé, jajagi, cremation tomorrow at 11 AM. Route bois chéri Mokami, route bois chéri Mokami, Pinsat Sal, qui 65 years old, qui Shimati Bhama Ramchan, Shimati Bhama Ramchan, jo finam si, zada jani jati, tikmiti hoge, unki article, dinki sari desbajikal, dinki sari desbajun ki bhai, shi ashok Ramchan ki ghar. रुद बाशेरी मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Check your time, din ke 12 bajkar 6 minute hue hain.
5: Suhana Safar, Suhana Safar.
4: सभी म्यूजिक लवर्स को अनीता का प्रेम सहित नमस्कार हेलो और आदाब और सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है वेल दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग जबरदस्त हैं और क्यों ना हो क्योंकि वीकेंड शुरू हो चुका है जी दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों का वीकेंड बढ़िया तरीके से शुरू हो चुका है वेल अभी हम अपने म्यूजिकल करावां शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही मीठी धुन के साथ जो हमने यहाँ पर लोगों के लिए चुना है तो ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारी पसंद कैसा लगा तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम गीतों का कारावां शुरू करते हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर अनीता साथ दे रही है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो जगजीत सिंह की आवाज़ में

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। जी दोस्तों, फिल्म अर्थ का गाना मुझे उस व्यक्ति की याद दिलाता है जो मेरे दिल के बहुत पास थी, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसने यह गाना अपने आखिरी दिनों में गाया था। वेल, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड फॉर यू व्हाटएवर यू आर। लेकिन अभी भी आप जो हैं हमारे दिल में हैं। सो समवन स्पेशल आउट देयर।

दोस्तों इस फिल्म में जो है राजकिरण जी ने एक संघर्षशील गजल गायक के रूप में बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस दी है और शबाना आज़मी के साथ उनकी जो केमिस्ट्री इट वाज जस्ट वाव। और जी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। त्रिवरे से कल्याणी जी हैं और आप जो हैं फिल्म चांदी सोना का गाना सुनना चाह रही हैं। यही गाना आपकी चार बेटियों के नाम श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति वीरेन हैं, साथ ही साथ आपके दो दामाद हैं हर्षिल, अमृत और जियांश हैं, शिवांश हैं, पूरे दुआऊ परिवार के नाम यह गाना चल पड़ा।

0: सफर
1: सुहाना सफर
2: जिस दोस्तों यहाँ पर हमने जो है खुशनुमा माहौल सेट कर लिया है अतः जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है तो बेशक फटाफट जुड़ जाए ऑन योर फेवरेट रेडियो चैनल आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन एंड ऑफ कोर्स योर डेडिकेशन ऑन 5250-6200 पर आप जो है फोन कॉल्स कर सकते हैं 4028070 पर मौका से सुदेवी जी है साथ दे रही है और आप कहती है हमारी मीठी आवाज़ सुनकर आप जो है गदगद हो गई है आप सुनना चाह रही है फिल्म किस्मत का गाना और यही गाना जाएगा विशेषकर आपके प्यारे पति देव राज के नाम और बच्चों के नाम जो देश में है और विदेश में भी साथ ही साथ किरण पुरी जी जो हैं कनाडा से साथ दे रहे हैं दूर दराज से वे सुन रहे हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं तो थैंक यू इसके लिए जी साथ ही साथ आपके साथ है जे लाल नरेंद्र कुमार निंडी जी कालाराम कारीगर जी कनाडा से आशा करते हैं कि हम आपके आफ्टरनून को ज़बरदस्त बना रहे हैं यहाँ पर तो अगला गाना आप लोगों के नाम ऑफ कोर्स महेंद्र कपूर की आवाज़ों में और जितने लोग महेंद्र कपूर को पसंद करते हैं तो चलिए यह गाना आप लोगों के नाम

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया. You're listening to RM3 Radio Mana.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, खोंगुप से शर्मा जी साथ दे रही हैं और सभी भक्तगण को गणेश जी की गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हैं और वे आशा करती है कि आप लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो। और आपकी फरमाइश है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का प्यारा सा गाना, और यही गाना जाएगा आपके भाई जयप्रकाश के नाम। भाभी नम्रता है।

नेफ्यूज हैं युधिष केशव एंड आपकी सखियां हैं वीना रामफल विश्वानी दुखी जी और नंदिनी ओकलू और जितने भी गणेश भक्त हैं उन सब को जो हैं कहते हैं बों कुराज। अभी जो हैं तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं तो यही कामना करते हैं कि गणपति बप्पा जो हैं आपके विघ्नों को आपके दुखों को हर लें।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है। आप कहती है हेलो जी, एंड मुझे लगता है कि ये माधुरी जी हैं क्योंकि नाम नहीं लिखा आपने। तो हेलो जी, विश यू लवली सैटरडे। थैंक यू जी, सेम टू यू। एंड आप जो हैं फिल्म स्वयंवर का गाना सुनना चाह रही हैं, ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में, एंड वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू इस फरमाइश के लिए जी। एंड ऑफ कोर्स यह गाना जाता है आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स हमेशा जो हैं आप परी के नाम भी जो हैं गाना मांगती हैं, तो आपके लिए और परी के लिए।

वाह क्या गाना है, और वो भी रवि साहब लता जी की जो कॉम्बिनेशन है वाओ। जी दोस्तों, मरालवे से अनीता जी साथ दे रही है और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आपने यह गाना मांगा है, फिल्म है अग्निपथ। यह गाना जाएगा इटू परिवार, गोगा परिवार, लालजी परिवार और सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए मोरियारे, गणपति बाप्पा मोरियारे।

जी दोस्तों, सभी गणेश भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं और आशा करते हैं कि यह जो पावन पर्व है वो ठीक से जो है सभी पूजा पाठ हो जाए। और यहाँ पर जो है ज्योति जी ज्योति गिरधारी जी बॉम्बू से साथ दे रही हैं और आप कहती हैं कि आप अपने प्यारे पति जो हैं उनको प्यार का इजहार कर रही हैं ऑफ कोर्स रेडियो मनोरंजन के ज़रिए, और आप जो हैं उनसे कुछ प्यारी प्यारी बातें जो हैं कहना चाह रही हैं, और वो भी फिल्म जब प्यार किससे होता है का गाना के साथ। और आपके पति है तन्वीर गिरधारी जी जो अभी जो है ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको कहेंगे बों कुराज, लेकिन साथ ही साथ जो है पति देव जो है यहाँ पर आपको जो है आपकी पत्नी जो है याद कर रही है। और चलिए, तो यह गाना आपके नाम, और साथ ही साथ यह गाना जाएगा पूरे बुढ़ेसर परिवार बॉम्बू के रहने वाले हैं। तो चलिए, प्यारी पत्नी ज्योति की ओर से पतिदेव तन्वीर के नाम।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर जो है फिका फ्लक्स से अनीता जी जुड़ गई हैं और आप कहती है कि सभी दोस्तों परिवारों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारे शुभकामनाएं और आप फिल्म अग्निपथ का गाना सुनना चाह रही है। तो चलिए एक बार फिर से गणेश भगवान को नमन करते हुए उनका एक गाना सुनते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, खुशमा फ्लैग से देवयानी जी साथ दे रही है हमेशा की तरह। थैंक यू देवयानी जी। और आप फिल्म सरस्वती चंद्र का गाना सुनना चाह रही है। यह गाना जाएगा पूरे ठेरी परिवार और देवधारी परिवार के नाम। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से याचना आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ कल 13 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक समारोह लगेगा समापन अगले 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर गए थे सपने उम्मीदें और एक विरासत आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस समय एक मंच पर जुटे हैं पूर्वजों ने समुद्र पार करके दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई थी आज उनकी संतानों के पास उस पहचान को एक वैश्विक ताकत में बदलने का मौका है अवसर है सुलहवे गोप्य इंटरनेशनल कॉन्वेंशन 2026 का जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता पहचान और भविष्य पर मंथन हो रहा है मलेशिया दक्षिण अफ्रीका जापान कनाडा म्यांमार भारत और अन्य देशों से भी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं उद्घाटन समारोह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल तथा मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों के साथ हुआ विदेश की खबरों में सऊदी अरब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है जिसके बाद उसे बंद करवा दिया गया है ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से ही सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है जिसके बाद इसे बंद करवा लिया गया है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार मौसलमा कॉन्स्टांस पोस्ट डे फ्लैक में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्मा प्रभु जो प्रभु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनकी पत्नी अनीसा प्रभु के मकान मौसलमा कॉन्स्टांस पोस्ट डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM विष्णुदत्त प्रसाद क्षमा करें टैगोर लेन लाफ्लोरा में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की कुमारी प्रमिला कालीचरण जो आदन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके भांजे शिव कुमार विष्णुदत्त प्रसाद के मकान टैगोर लेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंडबोआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
2: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, एक बार फिर से सुहाना सफर कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है, जो अभी रेडियो मनोरंजन की लहरों द्वारा प्रसारित हो रहा है और साथ दे रही है अनीता। और यहाँ पर 1:04 हुए हैं, तो गानों का कारवा जारी रखते हैं। और यह गाना जाएगा कहवा कास्या जी की, बिंदु दुखित राम के नाम, उनके पति हैं रमेश दुखित राम और साथ ही साथ घोंपुआ के लोफर परिवार के नाम। यह प्यारा सा गीत गणेश भजन आप सब के नाम।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, आज शनिवार है, वीकेंड का दिन है, और अगर आप जो हैं पूरे काम काज करने के बाद आराम फरमा रहे हैं तो वॉल्यूम को थोड़ा सा जो है ऊपर कर लीजिए। आज रिलैक्स करने का दिन है। हम जानते हैं कि कुछ लोग जो है तैयारियों में जुट गए हैं गणेश चतुर्थी के लिए, तो उनको कहेंगे कुहाश। और जो लोग कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर कार्यक्रम का गानों का आनंद लीजिए। और अब एक प्यारा सा गाना आने वाला है, फिल्म है यादें, और इस गाने की मांग माला जी ने की है जो रिविया जी रोंपो से साथ दे रही है। और यही गाना जाएगा कनील के लिए, कनीश, कविश, केविन, सत्यम, किरण, शिव और स्वयं आपके लिए। यादें, जो कुछ रहता है हमारे साथ वो सिर्फ यादें ही रहती है, तो हमेशा अपनों के साथ और दूसरों के साथ अच्छी यादें बनाते चले। क्या पता कब यहाँ जीवन जो है यूं ही कट जाए, सिर्फ यादें ही रहेगी।

दोस्तों, कहा गया है कि जिंदगी के कुछ रास्ते तुम अकेले तय करना, कुछ मंजिलों को तुम खामोशी से मिलने देना। यहां हर कोई शुभचिंतक नहीं है, इसलिए उन रास्तों पर मेहनत तुम बेआवाज करना। फिर वो चाहे तुम्हारा खूबसूरत रिश्ता हो या मंजिल तक पहुंचने वाला कोई किस्सा हो, उसे खुद पर भरोसा रख, खुद तक सीमित रखना। क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी सुन तो लेते हैं, मगर तुम्हारा दिल से खुश होना उन्हें पसंद नहीं होता। कुछ लोग सुनकर तालियां भी बजाते हैं, मगर उनके दिल में वो जज्बात नहीं होता। कोई तुम्हें अपनी राय से मोड़ना चाहेगा, कोई तुम्हारा हौसला अपने डर से तोड़ना चाहेगा। इसलिए आवाज तब करना जब तुम अपनी मंजिल को पा लोगे। तब तक खुद को उन नजरों से बचा लो।

जी दोस्तों, यहाँ पर जो है एक प्यारा सा मैसेज, ऑफ कोर्स तीन तीन मैसेज मिला है एक प्यारी सी गुड़िया के नाम के लिए। यहाँ पर सिमी सिंह का जन्मदिन है आज और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है। और यहाँ पर जो है एक मैसेज आया आपके लिए फूफू जो है मौसी प्रकाशवती जी की ओर से, और आपको कह रही है हैप्पी बर्थडे टू यू सिमी बेटी, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं जो है मामा विजयंती की ओर से है। जसवंत सिंह जी है पापा, आपके भाई है रवि, साथ ही साथ पूरे रघुनंदन परिवार की ओर से, और आपके कजिन है युद्धेश केशव, साथ ही साथ राम मामू की ओर से, जय प्रकाश मामू की ओर से, राम प्रकाश मामू की ओर से, सभी परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है। और यही कामना कर रहे हैं कि आप जो है जीवन में हमेशा खुश रहे, प्रगति करें, आगे बढ़े। तो दिल से दुआ आपके लिए यहाँ पर आ रही है और आपके लिए खूबसूरत सा गाना मेघना मिश्रा की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं आपके लिए प्यारी गुड़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू सिमी।

साथ ही साथ आपकी प्यारी मौसी श्यामा जी आपको भी ढेर सारी बधाइयां दे रही हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और जो लोग मना रहे हैं आज अपना बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, हमें यहाँ पर काफी मैसेज मिल रहे हैं और यहाँ पर जो है एक का मैसेज आया है, लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल शो, थैंक यू इसके लिए जी। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया और यहाँ पर हम अनीता साथ दे रहे हैं आप लोगों की सखी हर शनिवार को रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर कार्यक्रम को लेकर। और यहाँ पर जो है केश डी कटरबोर्न से साथ दे रही है और आप कहती है आप किशोर कुमार जी के बहुत बड़ी फैन है और आप फिल्म मिली का गाना सुनना चाह रही है, यही गाना जाएगा आपकी बेटियां नेहा नीताशा के नाम, साथ ही साथ हमारे लिए थैंक यू जी इसके लिए। तो चलिए हाँ गाना आप लोगों के नाम।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, 70s का गाना जब हम सुनते हैं तो ऑफ कोर्स वो यादें जो हैं ताज़ी हो जाती है। और यहाँ पर जो है नंदा जी पाई से साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म संगम का गाना, और यह गाना जाएगा विशेषकर जो है आपके पति दीपक के नाम, बच्चे हैं अविनाश, अभिषेक, अरविनी, अरविना, आशील, नाती गुल्लू है, अरवी है, साथ ही साथ नई बहू जो आई है उनके लिए यह गाना जाएगा, गणेश परिवार है, पुनीता परिवार है। तो चलिए यह गाना आप लोगों के नाम।

जी दोस्तों, पॉपुलर मूव से सचिन जी साथ दे रहे हैं, लेकिन जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, तो यह अगला गाना आपके नाम जा रहा है। और साथ ही साथ कविता दुफ्रे से साथ दे रही है, जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है जी, तो यह गाना आपके लिए फिल्म होटल का गाना। और साथ ही साथ मोहन है, रेखा है, अंबिका है, प्रमिला है, सबीना, उन सब के नाम यह गाना।

जी दोस्तों, पोलांजी से छोटी जी साथ दे रही है और आपने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का गाना मांगा है और यह गाना जाएगा ललिता जी के लिए, हरीश जी के लिए, आत्माराम जी के लिए, तीन कोरी परिवार के लिए और लालमाती की कौमाली परिवार के लिए।

जी दोस्तों, आज है प्रिंसेस प्रियक्षणा लच्छा का जन्मदिन और आप 12 साल की हो गई हैं। आप रोड्रिक की रहने वाली हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बर्थडे विशेस फ्रॉम दागन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लवेश

जी दोस्तों, कोटेज से आशा जानू जी साथ दे रही हैं और आप कहते हैं एंजॉइंग ऑल योर सॉन्ग्स। और 14 सितंबर को आपका स्वीट नेफ्यू ऋषभ का जन्मदिन है, तो ढेर सारी बधाइयां फ्रॉम नानीमा कुमारी भाई, शुभम, मौसी, आशा, मामा आरती, पापा राठ, होने वाली भाभी नेहा और ओल जानू परिवार, किसनामा परिवार की ओर से एक गाना आपके नाम जा रहा है। और जिन लोगों को जो है लाइन नहीं मिली आज, उन सब के नाम अगला गाना जाएगा। नोट्रोडाम की रेहाना जी, कटरबोन की बाबू अनंतवा जी, सूरीनाम की जयश्री जी, यशवंती जी, खांगोप की विमला जी, वाकुआ के सुबोध जी तथा उनके स्वर्गीय पत्नी जी, वाकुआ की विश्वानी पुरन जी, हरीश जी बोबासर से है और मुंताई ब्लॉन्च से नवीन जी के नाम अगला गाना जाएगा। और इसी गाने के साथ हम आपको कहेंगे नमस्कार, टेक केयर, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, क्योंकि 2 बजे आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद इतिहास के झड़ों के कार्यक्रम। तो तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलेंगे।

0: Dubiem. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार याचना
1: नमस्कार हंसिनी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और न्याय होगा ये इंतजार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है उनके दर्द को और बढ़ा रहा है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य नहीं है और इनकी वजह का पता लगाना उतना ही जरूरी बन गया है रोड्रिग्स में ये घटना 26 साल की एक महिला को ने दम तोड़ दिया है उस पर चाकू से वार किया गया था 26 साल की ये बस कंडक्टर आज सुबह रोड्रिग्स के अस्पताल में भर्ती हुई जहां पर उसने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया आज शव परीक्षण किया जाएगा ताकि उसकी इस मृत्यु का पता लगाया जा सके ये महिला रोश बोंज की रहने वाली थी और ऐसा माना जा रहा है कि 27 साल के उसके साथी ने उस पर चाकू से वार किया संदिग्ध एक मैकेनिशियन है जो मोलवीबै का रहने वाला है उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में रखा है आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सवम का शुभारंभ हो रहा है ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ कल 13 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक समारोह लगेगा समापन अगले 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सवम का समापन 20 अक्टूबर को होगा विदेश में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है जिसके बाद उसे बंद करवा दिया गया ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से ही सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने में मदद की रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है जिसके बाद इसे बंद कर लिया गया है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: शोक समाचार सुनिए टैगोर इन ला फ्लोरा में 61 साल की 61 years old की कुमारी प्रमिला कालीचरण जो आदरण के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है उनके अर्थी सुपहर 3 बजे उनके रिश्तेदार शिव कुमार विष्णुदत्त प्रसाद के मकान टैगोलेन लाफ्लोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गाँव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 8:03 PM बुआशेरी रोड मोका में बुआशेरी रोड मोका में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमदत्त गुलाम जो बालों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुपहर 2:30 बजे अर्थी आज सुपहर 2:30 बजे उनकी अर्थी कल सुपहर 2:30 बजे उनकी पत्नी अनीता गुलाम के मकान वाशेरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टॉन सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो ऑन संडे 8:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
3: You're listening to our

0: 3 Radio Manoranjan.
1: इतिहास के झरोखों से
2: नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से। वैसे तो हम अभी मना रहे हैं गणेश चतुर्थी, सोमवार बस नजदीक ही है, लेकिन गणेश चतुर्थी को मनाने की बातें, इस त्यौहार को अपना बनाने की चीज़ें बहुत पुरानी हैं। उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उत्साह, बहुत सारे कारण छिपे हुए हैं, उनको जानना चाहिए। हम आज अपने बच्चों को विरासत के रूप में गणेश चतुर्थी दे रहे हैं, गणपति से उनको अवगत करा रहे हैं, और यहाँ तक कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम अब गणपति की मिट्टी की मूर्तियों की ओर भी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की यात्रा काफ़ी लंबी है श्रोताओं। गणपति की पूजा तो हिंदू समाज में सभी करते हैं, निश्चित ही है कि शिव ने उनको वरदान दे रखा है कि कोई भी पूजा पाठ होगा, कोई शुभ कार्य होगा, सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाएगी। लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या जहाँ जहाँ भी हिंदू परिवार पहुँचे, गणपति उनके हृदय में उनके साथ ही पहुँच गए। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं रेडियो मनोरंजन पर, और जुड़ सकते हैं RM3 पर 4028070 पर। आज हम सब मिलकर गणपति बप्पा मौर्या कहेंगे, और मेरे साथ सुमिता जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत।
3: नमस्ते अलका जी, और नमस्ते हमारे सभी श्रोताओं को। जी हाँ, आज इतिहास के झरोखे जो प्रोग्राम है, स्पेशल गणेश चतुर्थी इस पावन पर्व पर आधारित है। और भगवान गणेश की अगर हम बात करें तो विघ्नों के हर्ता है, सभी विघ्नों को दूर करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो चलिए भगवान गणेश के नाम से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
4: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
5: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: का हो जाता है। इतनी शक्ति है उनमें, रिद्धि सिद्धि के देवता है उनकी, एक और रिद्धि है एक और सिद्धि है, और इतनी बड़ी सूंड मतलब बस पूरी दुनिया को समेटे हैं, और पेट तो पूछिए ही मत। चूहे महाराज तो हम सब का हाल चाल उन तक पहुँचाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हमें कोई छोटी सी बात ये कह दे कि देखो किसी को बताना मत, जब तक हम बताना ले पछता ही नहीं है। और दूसरा भी यही कहता है किसी को बताना मत, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वह भी जब तक ना बता ले उसके पेट में बात नहीं पचती, और देखते ही देखते पूरे गाँव को पता चल जाती है। लेकिन गणपति का पेट और उनका चूहा, ये दोनों इसी चीज़ के प्रतीक हैं कि आप गणपति के आगे रोइए, हंसिए, गाइए, दुख बोलिए, उनके पास से बात बाहर नहीं जाएगी। चूहा कोने कोने से हर एक का दुख सुख उन्हें बताता है, और उनके बड़े बड़े कान पूरी दुनिया की बातें सुनते हैं, लेकिन सब भीतर रखते हैं। वे लोगों में जैसे हम पालप में विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान हमारे वह सब कुछ पचाते हैं और मदद करते हैं, सामने ना सही, किसी और साधन द्वारा, किसी और व्यक्ति द्वारा। बस विश्वास होना चाहिए और उसको पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। कभी कभी हम कह देते हैं कि क्या मेरी मदद की, क्योंकि हम नेगेटिव हैं। यदि हम ज़रा सकारात्मक सोचें तो आप पाएंगे कि हमारे आसपास बहुत कुछ सकारात्मक पॉजिटिव हो रहा है, तो वह हमारे विश्वास से होता है। तो भाई ये जो गणपति की पूजा है, आज तो बॉलीवुड भी इसके आगे पीछे घूम रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स ने भी बड़े बड़े गीत इसके आगे पीछे गाए, लेकिन इसको महाराष्ट्र में इतना बड़ा रूप देने के लिए इतिहास के पन्नों को तो पलटना ही पड़ेगा। तो अभी हम आपसे सोचते हैं सुमिता के बाद फिर आगे बात करेंगे।
1: बिल्कुल, आपने इतिहास की बात की तो कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व सार्वजनिक मनाने के रूप में लोकमान्य तिलक जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्यों अलका जी, है ना?
0: बिल्कुल, और लोकमान्य तिलक चाहते थे कि यह जो छोटा सा पर्व है वो सांस्कृतिक पर्व बन जाए और राष्ट्रीय पर्व बन जाए। आप एक उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, महाशिवरात्रि जो फरवरी में मॉरिशस में मनाते हैं, आज उसको कौन रोक सकता है बताइए, पूरा राष्ट्र उससे जुड़ जाता है। छुट्टी एक दिन की होती है, लेकिन हम सब दो तीन दिन छुट्टी लेते हैं। ऐसा मन में उत्साह होता है कि हर कोई वहां पहुंचना चाहता है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, मानो वो हमारे अस्तित्व की पुकार और पहचान है। तो तिलक ने भी देखा कि भारतीयों में अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र को यदि एक करना है तो गणपति का ये उत्सव जो है राष्ट्रीय उत्सव होना चाहिए। बस उन्होंने इसे राष्ट्र के साथ जोड़ा, राष्ट्र के लोगों के साथ जोड़ा, और धीरे धीरे यह राष्ट्रीय उत्सव बन गया। जो व्यक्तियों के घरों में था या केवल एक गाँव में था, पूरा राष्ट्र उसे सड़कों पर मनाने लगा। और बॉलीवुड में तो आपने बड़े बड़े गीत ये सब देखे ही होंगे।
1: जी बिल्कुल, और गणेश चतुर्थी का पर्व अपने आप में, जब इस पर्व की बात करते तो मानो मन उत्साह से भर जाता है ना?
0: क्योंकि वह देवता ही ऐसा है जो आपको आगे लेकर चलता हाँ। है, वो आपको पीछे नहीं करता, और उसने इतने मूल्य जीवन के दिए। देखिए पूरे देवी देवता पूरी दुनिया का चक्कर लगाने चल पड़े कि सबसे पहले जो आएगा शिव के पास उसका पूजन प्रथम होगा, लेकिन गणेश जी को देखिए, अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगा के आके बैठ गए। तो पूरी दुनिया उनकी उस आस्था और विश्वास में समाई है, जो आज तक हम कहते हैं कि माता पिता का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, ऐसा मूल्य अपने जीवन से वे देते हैं कि जो हमेशा शाश्वत रहता है।
1: जी, चलिए जितने श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, अगर आप भी गणेश चतुर्थी इस पावन पर्व के बारे में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है 4028070 पर।
2: इतिहास के झरोखों से

श्रोताओं, सचमुच जिस तरह से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, वैसे भारत के उत्तर में रामलीला और राम जी की पूजा, लेकिन गणेश चतुर्थी का राष्ट्रीय पर्व का बनना और महाराष्ट्र में उसका प्रचार प्रसार होना आज केवल महाराष्ट्र तक नहीं रह गया है, अब तो पूरे देश, यहाँ तक कि कर्नाटक साउथ में भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, क्योंकि इतना विश्वास हिंदू परंपरा में कि गणपति को यदि आपने उनका आवाहन किया तो वे कृपा करते ही हैं। और श्रोताओं देखिए कितना सुंदर पर्व है कि हम उनको बुलाते हैं और उसके बाद 10वें दिन विसर्जन करते हैं, इसके पीछे बड़ा गहरा भाव है। जीवन और मृत्यु की परिभाषा है ये। हम संसार में आते हैं, माँ हमें बुलाती है, माता पिता आवाहन करते हैं एक जीव का, लेकिन सबको पता है कि एक दिन जाना है। उस विसर्जन पर हम में से कितने लोग रोते भी हैं, क्योंकि 10 दिन में इतनी मोह माया पैदा हो जाती है कि लगता है कि हाँ ये गणपति हमारे साथ ही रहते, इतना बड़ा जीवन का उत्सव मनाया और गणपति बप्पा को वापस भेज देंगे। लेकिन श्रोता, उसमें जीवन की व्याख्या है, कितना भी बड़ी मोह माया हो, कुछ भी कितना भी अच्छा हो, उस सब का विसर्जन करना ही है। और अपनी भी मृत्यु की तैयारी करो, खूब धूमधाम से जीवन में जियो, अच्छे कर्म करो, हंसो और हंसाओ, लेकिन अपने इस देह के विसर्जन की तैयारी भी करो। उस विसर्जन से पहले अपने अहंकार का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। तो गणपति वंदना या गणपति बप्पा मौर्या को जो हम बुलाते हैं, या उन्हीं को कहते हैं राजाओं के राजा हैं वे, उस सब के पीछे जीवन की व्याख्याएं छिपी हैं। और लड्डू देखिए, लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसको बनाया आराम से जा सकता है, और छोटा बना ले, बड़ा बना ले, संख्या बड़ी छोटी की जा सकती है। तो गणेश जी आपसे कोई मोहन भोग या कोई ऐसी मिठाई नहीं मांगते हैं, केवल एक मोदक या लड्डू, उसी में प्रसन्न है, मस्त हैं वे इसमें। तो अर्थात बताया कि एक लड्डू में भी जो मस्त

0: मस्त हो सकता है, खुश हो सकता है, वह है असली गणपति।
1: बिल्कुल, और कोई भी पर्व है अपने आप में उत्साह से भरा होता है, क्योंकि ये एकता का प्रतीक है, सभी परिवार के सदस्य को एक साथ लाता है।
0: और सुमिता, तुम तो मुंबई से हो, अरे कुछ वहाँ की बातें बताओ हमें।
1: ऐसा है कि मुंबई में गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व जो है सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, हर धर्म के लोग जो है इसमें बड़े ही उत्साह से जुड़ते हैं।
0: ये फिल्मों में भी हम देखते
1: हैं, और वाकई में ये वाकई में होता है। जैसे दीपावली के वक्त हम यहाँ पर अन्य धर्मों को जाकर मिठाई बांटते हैं,
0: तो वैसे शुभ दीपावली, बिल्कुल
1: वैसे ही गणेश चतुर्थी का ये जो पर्व है, ये हर कोई जो है आपकी तैयारियों में आपका साथ देता है, फिर मिलकर इसे मनाते हैं। क्योंकि किसी के घर में अगर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और पड़ोसी अगर अन्य धर्म का है, तो वो भी आता है आपके साथ देने के लिए, सहयोग के लिए।
0: वहाँ पर तो वो जो झाकरी और रात को नृत्य होता है, वो तो मानो चार चांद लगा,
1: क्योंकि भगवान गणेश को रात में आप घर में रखते तो सोने तो नहीं जाएंगे ना, रात भर जागरण करना पड़ता है, तो सब मिलकर
0: वातावरण, भोजन परोसा, देखिए भोजन भी प्रसाद बन जाता है। तो हमारे साथ एक श्रोता जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनकी इंतजार कर रहे हैं, एक बार फिर मिलाइए, शायद कट गया उनका फोन। तो श्रोताओं, सचमुच ये जो जागरण और इस झाकरी में बूढ़े बड़े बच्चे, बच्चों के तो उत्साह की पूछिए ही मत। देखिए ना, लोग कहते हैं कि बच्चे धार्मिक फंक्शन में जुड़ते नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हों जिसमें उनकी एनर्जी लगे तो वे जुड़ जाते हैं। देखिए ना, महाशिवरात्रि की पद यात्रा, सब बच्चे पैदल जाते हैं, उनको आनंद आता है इसमें, चाहे मीलों चल के जाते हैं, ठीक ऐसे ही झाकरी में भी खूब नाचते हैं। तो चलिए एक श्रोता जुड़े, उनको सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ नमस्ते जी।
2: नमस्ते दीदी, कैसे?
0: हम ठीक है, आप सुनाइए।
2: जी, पूजा की सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ।
1: जी धन्यवाद कमला जी।
2: हाँ नमस्ते, आप दोनों को प्रणाम। आरोही आपसे दो शब्द कहेगी।
0: जी बोलिए।
2: प्रणाम प्रीति नानी।
0: हाँ प्रणाम। अरे आरोही, प्रणाम प्रणाम, कैसी है बेटे?
3: ठीक है।
0: क्या कर रही हो? क्या कर रही हो इस समय?
2: मैं खेल रही हूँ।
0: अब पता चला नानी है तो खेलेगी ना, क्या बात है।
3: थोड़ी पढ़ाई,
0: थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी मस्ती है ना। चलो क्या सुनाओगी आज आरोही? शाबाश, बोलो बोलो। जय गणेश,
3: जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा,
0: शाबाश।
3: जय गणेश, जय गणेश देवा,

0: शाबाश बहुत अच्छा थैंक यू तुमको लड्डू अच्छा लगता है नहीं और कैसी हैं कैसी हैं कमला जी
1: हाँ ठीक हूँ दीदी अभी तो थोड़ी पूजा की तैयारी
0: सभी लोग
1: और आरोही भी गणपति डांस के लिए तैयार हो रही है कपड़े वगैरह
0: क्या बात है यही तो उत्साह है जीवन का यही बहुत सुंदर बहुत सुंदर
1: और सबको मंगलमय हो ये पर भगवान सदा हमारे हमारे ऊपर
0: कृपा दृष्टि बनाए रखें बहुत धन्यवाद कमला जी बहुत धन्यवाद तो श्रोताओं अपने बच्चों को भी हम तैयार कर रहे हैं और बच्चे कितने उत्साह से नए कपड़े और उस डांस में भाग लेना देखिए भगवान तो भाव के भूखे हैं आप प्यार से बस वो नृत्य करें कितना आपको अच्छा आता है कि बुराई से वो नहीं देखते हैं क्योंकि भगवान के दरबार में केवल भावना और प्यार की बात होती है
2: बिल्कुल और कहीं ना कहीं आपने नौजवानों की बात की अलका जी और मॉरिशस में अब जिस भव्य रूप से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं वो तो अपने आप में इस तरह से जो है लोकप्रिय होता जा रहा है
0: तो कहीं कहीं पर जिन बच्चों को थोड़ा अच्छा नृत्य या कला आती है वो अपने ग्रुप को सिखा रहे हैं
2: बिल्कुल और
0: तो
2: बड़े बड़े
0: बात
2: और बड़े बड़े ग्रुप तो हम देखते हैं कहीं कहीं पर जहाँ पर 10 दिनों के लिए भगवान गणेश की स्थापना होती है रात भर ये जो बच्चे हैं नौजवान बस करके जाकर झांकरी करते हैं एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाते हैं यानी कि दिन में काम कर रहे हैं और रात में भगवान के प्रति अपने जो है आस्था को इस तरह से दर्शा रहे हैं
0: बस यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि कभी कभी ये जो झांकरी वाला ग्रुप है बहुत अच्छा करते हैं बहुत मेहनत लेकिन इसमें से कुछ बच्चों को सिगरेट वगैरह पीने की आदत होती है और जब वे किसी घर

0: में ये परफॉर्मेंस के लिए पहुंचते हैं तो नीचे कोने में खड़े होकर सिगरेट सब पीते हैं, तो ये जो प्रभाव है ना वो अच्छा नहीं पड़ता, चाहे पुलिस ही उनको देख रही हो, चाहे जो मेहमान आ रहे हैं वो एक नज़र उन पर डाल रहे हों। थोड़ा सा जब हम प्रभु के दरबार में जाते हैं तो पूरे संयम के साथ आना चाहिए। ये भी भक्ति का एक बहुत बड़ा कदम है कि यदि हमारा आचरण पवित्र नहीं होता तो हम क्या प्रभाव डालेंगे। तो ये मैं अपने बच्चों से, क्योंकि बहुत बार जब मैं भी जाती हूँ तो ये देखने में मिलता है तो दिल दुखता है कि ये बच्चे जिस आध्यात्मिक राह पर हैं उसकी शक्ति तो बिना खाए पिए भी कितनी होती है, तो नशा करने की क्या ज़रूरत है। अगर ये बच्चे सुन रहे हैं हमें तो ज़रूर कहीं परिवर्तन आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।
1: बिल्कुल, चलिए एक और गीत हो जाए।
0: चलिए तो सुनते हैं।
2: इतिहास के झरोकों से

0: श्रोताओं, आपके भी घर के आसपास या आपके अपने ही घर में गणपति जी आ ही चुके होंगे, तो बस अब तो जैसे माहौल ही कुछ और हो गया है और आसपास वही भजन वही गीत। देखिए, पूरा देश या पूरा एक वर्ग उसके साथ जुड़ जाता है जब ऐसे महान व्यक्तित्वों या महान, जिसे हम कह सके, देवी देवताओं की चर्चा होती है, तो हमें उनसे एक शक्ति मिलती है क्योंकि वे हमेशा कल्याणकारी भाव लेते हैं। वैसे भी गणपति तो महादेव और पार्वती के पुत्र हैं, महादेव तो वैसे ही आशुतोष हैं और मंगल महादेव हैं, और माँ पार्वती तो शक्ति के प्रतीक है, तो उनका पुत्र कितने गुणों को लेकर आया होगा। इसीलिए संसार के हर कल्याणकारी कार्य से पहले जो पूजा की जाती है वो गणपति का ही आवाहन किया जाता है, और गणपति के आवाहन में जो उनका रूप है, कभी कभी कहानियों में बच्चे पूछते हैं कि क्या उनका सिर धड़ से अलग किया, और जरा और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि भारत में जो आयुर्वेद या सर्जरी का ज्ञान था वो कितना पुराना था। बाद में तो ग्रंथ हमें मिलते हैं चरक संहिता इत्यादि, लेकिन इसका मतलब कि इस देश में सर्जरी या अपने अंगों का रिप्लेसमेंट का जो तत्व था या जो ज्ञान था वो यहाँ पर, क्योंकि उसके बिना इस तरह की बात हो ही नहीं सकती। चाहे आज वो कहानियों में लिपटी हुई है, चाहे आज वो प्रतीकों में लिपटी हुई है, लेकिन इतना तो है कि उसको फिर से जिंदा करना या सिर को जोड़ना, जैसे आज मान लीजिए हृदय लगा लिया जाता है दूसरे व्यक्ति की आंख से, आंखें जो देते हैं दान में, बिल्कुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनको कहते हैं, तो ये सब लोग आज की साइंस भी कर रही है। तो अगर बहुत गहराई से इन चीज़ों को हम देखें तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये जो आयुर्वेदिक का ज्ञान था ये भी वेदों का एक भाग है। इसका जो ज्ञान था वो कितना प्रचलित था, जो आज हमें प्रतीकों में लिपटा हुआ मिलता है।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं, चलिए अलका जी, हम अब बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी का पावन पर्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है,
0: अब तो जहां भी आप्रवासी बिल्कुल भारतीय पहुंचे हैं ये पहुंच गया।
1: जिस तरह से दीपावली देखिए आने वाले समय में कितनी प्रचलित हुई, हाँ। के व्हाइट हाउस तक जो है आजकल दीपावली मनाता है,
0: न्यूयॉर्क की सड़क पर एक बड़ा बैनर जो है जो रोड का एक लगा होता है उस पर भी दीपावली की चीजें होती हैं।
1: आई बिलीव कि आने वाले समय में गणेश चतुर्थी भी शायद कुछ ऐसा ही रूप लेगा, क्योंकि अभी के लिए जैसे मॉरिशस में गणेश चतुर्थी का ये पर्व मनाया जाता है, फिर कहीं साउथ ईस्ट के देशों में भी जैसे कि थाईलैंड बोलिए, सिंगापुर बोलिए, मलेशिया बोलिए, यहाँ पर भी काफ़ी प्रचलित है। उसके अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर भी इस पर्व को अब जो है मान्यता मिल रही है, मतलब कि इसकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
0: बिल्कुल, मेरा तो श्रोताओं आपसे यही निवेदन है कि आगे आने वाले युग विज्ञान का युग चल रहा है, हर चीज़ में तर्क काम कर रहा है, क्यों कैसे क्या, तो हमें अपने बच्चों को गणेश चतुर्थी का सही अर्थ बताना चाहिए, गणेश का प्रतीकात्मक अर्थ बताना चाहिए कि ये जितने भी त्यौहार हैं ये हमारी आइडेंटिटी, अस्मिता के प्रतीक हैं। ये त्यौहार जब हम इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे पूजा करते हैं, इकट्ठे पैसे मिलाकर सबको खाना देते हैं, इकट्ठे सबको, तो देखिए जीवन में कितना उत्साह बना रहता है। अगर ये त्यौहार ना हो तो जीवन तो फीका सा ही हो जाएगा, लगेगा कि मनुष्य जीवन ही भारी है। आपके सामने अगला टाइम टेबल होता है तो आप कितनी तैयारी करते हैं, और इन त्योहारों के साथ साथ मार्केटिंग कितनी होती है, पूरा व्यापार चलता है, कितने लोगों का रोजी रोटी चलती है। तो आप सोचिए एक छोटा सा ये उत्सव लोकमान्य तिलक ने जो मुंबई में या महाराष्ट्र में उसको राष्ट्रीय रूप दिया, आज उसने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है, और हमें अपने बच्चों को सही अर्थों के साथ जोड़ना होगा ताकि वे लोग इनको ये ना कह सकें कि जैसे किसी ज़माने में जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, वे कहते थे चींटी को अन्न देते हैं, पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, बंदर

0: वाला देश कहते
1: सपेरो वाला देश कहते थे, लेकिन अगर गहराई में जब उतरे तो होश हो गई सबको कि सपेरो वाला देश नहीं, इस देश में चींटी में भी भगवान को देखा जाता है, हर प्राणी में, और पत्थर में जब हम भगवान देखते हैं तो पत्थर भी भगवान बन सकता है यदि मनुष्य उसमें अपनी आस्था डाल दे तो। ऐसा नहीं है कि हम पत्थर को पूजते हैं, हम पत्थर को भगवान बना देते हैं सामने। तो तब जाकर जब ये व्याख्याएं उन लोगों को पता चली, उन्होंने हमारे उपनिषद इत्यादि पढ़े, तब वे जाने कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी है। ठीक ऐसे ही अपने बच्चों को गणपति के रूप पर गर्व होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि गणपति सिंबॉलिक हैं सबके कल्याण के, सबके सुख दुख सुनने के, सबको खुशी देने के। तो यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी उतने ही विस्तृत हो जाएं।
2: इतिहास के झरोखों से

0: हैं और मंगलकारी गणेश की मूर्तियों को केमिकल के रंगों से रंग कर और फिर नदियों में विसर्जित करना, अरे कहाँ गणेश मानेंगे, नाराज हो जाएंगे। सुंदरता के नाम पर प्रकृति को नष्ट करना, और उनकी माँ पार्वती प्रकृति का ही दूसरा रूप है, उसकी शक्ति को, उसके रूप को मैला करना, खराब करना, और वो नकली सब गहने और कपड़े सिंथेटिक जब हम विसर्जन करते हैं तो सब नदी में प्रवाहित होता है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन वो जो केमिकल वाले रंग हैं और वो जो कपड़े हैं और वो जो नकली गहने सब उनको पहनाए जाते हैं, फूलों के गहने हम पहनाएं उनको ताकि फूल पानी में गल जाएं, और फिर मिट्टी के गणपति होने चाहिए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। अरे ये शरीर ही मिट्टी है, इसीलिए तो इनको जलाते हैं कि पांच तत्वों में मिल जाए। इसीलिए हिंदू धर्म में जलाया जाता है, दफनाया भी जाता है कुछ धर्मों में, लेकिन उसको बहुत समय लगता है गलने में, पर जब जला देते हैं या उसको इलेक्ट्रिक ओवन में डाल देते हैं तो जल्दी सब बदबू सब चीज़ें निकल जाती हैं। तो श्रोताओं, प्रकृति को ख़राब करके गणपति की कृपा कहाँ से मिलेगी, तो बहुत ज़रूरी है इको फ्रेंडली गणपति को घर पर स्थापित करना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने अलका जी, और समय के साथ साथ इस चीज में काफी परिवर्तन आया है। आजकल जो है मिट्टी के गणेश बनाना, इस पर
0: जगह पे वर्कशॉप सब लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है।
1: और जितने भी रंगों का प्रयोग
0: बिल्कुल
1: और जितने भी रंगों का प्रयोग होता है वो भी इको फ्रेंडली होते हैं। और आजकल बहुत से लोग जो है गणेश चतुर्थी पर उनका विसर्जन है समुन्द्र या नदियों में न करके किसी बड़े गमले में या कहीं पे करते हैं,
0: ताकि वो मिट्टी बाद में पौधे के लिए काम आ जाए।
1: और
0: क्योंकि नदियों में भी अगर मिट्टी ज्यादा हो जाएगी तो पानी का प्रवाह रुकेगा और कीचड़ बाहर निकलेगा
1: जी। और उसके अलावा आजकल एक और चीज जो देखने को मिल रही है कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है उसके बारे में बोल रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स जो है आजकल हम पढ़ते हैं और नेट के जरिए बहुत सारी जानकारी मिलती है कि बहुत सारे गणेश जो है जब उनकी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती तो उसमें जो है पेड़ और फूलों के बीज डाल देते हैं, तो जब लोग उन्हें मिट्टी में डाल रहे हैं
0: तो उसमें पौधे निकल आते। क्या बात है, देखिए इसे बोलते हैं ना उर्वर दिमाग और सृजनात्मक प्रतिभा। सचमुच ये बहुत अच्छा है कि वो मिट्टी अगर गमले में या किसी नदी के किनारे भी रह जाएगी तो पेड़ इत्यादि लग जाएंगे, तो पर्यावरण आगे चलते चलते और शुद्ध होगा। तो श्रोताओं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, गणपति रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। यदि अपना ही दिमाग नहीं इस्तेमाल किया तो गणपति बेचारे क्या करेंगे, तो थोड़ा एक कदम उठाओगे तब ना वो गोद में उठाएंगे।
1: और अपने वर्कशॉप की बात की, ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर बच्चे जो है आर्ट के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं,
0: और बहुत से आर्ट टीचर इसमें अपना समय
1: देते हैं, सप्ताह भर पहले
0: सेवा दे रहे हैं। तो ये
1: और एक अच्छी बात इसमें ये होती है कि जो गणेश आपने अपने हाथों से बनाया उसी को आप अपने घर में लाकर पूजा कर रहे हैं, भावना जुड़ जाती
0: है। मतलब एक एक, एक मिट्टी को जो सहला रहे हैं उस सब में जैसे भावना भक्ति जुड़ी हुई है। तो श्रोताओं, बहुत ज़रूरी है गणपति को हर युग में अपने युग की आवश्यकता के अनुसार बदलना, ढालना, अपनाना, पर गणपति तो गणपति हैं। आप उसे मिट्टी में बनाते हैं, घर पर बुलाते हैं, तो बस भाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। तो चलिए हम आपको एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं और उसके बाद अपने श्रोताओं से हम अनुमति भी मांगेंगे।
2: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
3: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
4: इतिहास के झरोखों से।
1: तो श्रोताओं, चलिए इसी के साथ इतिहास के झरोखे इस कार्यक्रम के हम लगभग अंत तक आ गए हैं। गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ आप सभी भी मनाएं और भगवान गणेश की कृपा आप पर, आपके जीवन पर और सभी पर सदा बनी रहे। अलका जी, आपको भी गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
0: क्या बात है, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सभी श्रोताओं को भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। हम सब खूब उत्साह के साथ मनाएं ताकि गणपति बप्पा अब तो घर में आए हैं, तब हमारे दिल में उतर जाएं और अगले साल फिर हम उनके साथ नाचेंगे।

0: 道。
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only.
2: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार।
3: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतज़ार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। जिन्होंने ये दुर्घटना की है उनके जिम्मेदारियों के बारे में उन लोगों को पता चलेगा। ये इंतज़ार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है, उनके दर्द को और बढ़ा रहा है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य बात नहीं है। इस देरी के बारे में, उसके कारणों के बारे में पता लगाना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। रुड्रिग्स में 26 साल की महिला की मृत्यु चाकू लगने से हुई। 26 साल की इस बस कंडक्टर ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। रोशबोंजे रहने वाली इस महिला पर 27 साल के उसके साथी ने चाकू से वार किया। मोलुबे रहने वाले इस मैकेनिशियन को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया है। दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर गए थे सपने, उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस में एक मंच पर जुटे हुए हैं। पूर्वजों ने समुद्र पार करके दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई थी। आज उनके संतानों के पास उस पहचान को एक वैश्विक ताकत में बदलने का मौका है, अवसर है। 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का, जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता, पहचान और भविष्य पर मंथन हो रहा है। विदेश समाचारों में, सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है, जिसके बाद उस पाइपलाइन को बंद करवा दिया गया है। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है, जिसके बाद इसे बंद कर लिया गया। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: RM3 Radio, Radio, Radio.
5: आज की चर्चा। मॉरिशस में अधिकांश लोगों की मृत्यु का मुख्य कारण कैंसर यानी कि कर्क रोग है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक उनकी जो निवारण है, उनकी जो ट्रीटमेंट है यानी कि जो इलाज है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है। खासकर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अनुसंधान किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर कैंसर बीमारी के निवारण को लेकर के जीतोड़ मेहनत कर रही है। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में। नमस्कार और आदाब। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त आज की चर्चा कार्यक्रम में एक ऐसे विषय हम लेकर के आए हैं जो अपने आप में, खासकर मॉरिशसीय परिप्रेक्ष्य में, बहुत ही प्रासंगिक है और अर्थपूर्ण है। और ये आम लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी कि कैंसर बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोग इसी से पीड़ित हैं, खासकर मॉरिशस में अलग अलग प्रकार के कर्क रोग है। और इससे जूझने के लिए किस तरह का इलाज किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां ली जाती हैं, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु और साथ ही साथ फार्मासिस्ट श्री नितिन कुमार। आप दोनों का आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर वासु।
6: नमस्ते अभी।
5: नमस्ते नितिन कुमार।
7: नमस्ते अभी।
5: सो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैंसर बीमारी से जुड़ी जो बातें महत्वपूर्ण बातें, खासकर कर्क रोग की जो इलाज है। जब एक पेशेंट यानी कि एक मरीज जब अस्पताल में जाते हैं, तो वे लोग डॉक्टर से मिलने के बाद

0: फार्मासी की तरफ जाते हैं, और फार्मासी की तरफ जब जाते हैं वहाँ पर उनको दवाइयाँ मिलती हैं। तो आज एक ही प्लेटफॉर्म में फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों का मिलन यहाँ पर रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यहाँ पर मिलने और बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले जब हम कैंसर का इलाज शब्द सुनते हैं तो हमें ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत एक बात सामने आती है वो है कीमोथेरेपी। लेकिन फिर भी हमें टामोक्सिफेन, प्लाक्लीताक्सेल, मोफिन जैसे नाम और बड़े बड़े भयंकर नाम सुनाई देते हैं और अचानक सब कुछ बहुत उलझन भरा सा होने लगता है। क्या ये सभी कीमोथेरेपी दवाइयां हैं? क्या ये सभी एक तरह से काम करती हैं? और अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो दो मरीजों को बिल्कुल अलग अलग दवाइयां क्यों दी जाती हैं? सबसे पहले मैं एक ही सवाल पूछूंगा और जवाब अलग अलग एस्पेक्ट मैं मतलब उम्मीद रखूंगा आप लोगों से। सो पहला जो प्रश्न है आप पर शुरू करता हूं डॉक्टर जी।
1: ओके, पहली बार जो मैं कहना चाहता हूं कि मोफिन जो है वो कीमोथेरेपी नहीं है।
0: ओके,
1: वो दर्द की दवाई है। तो हमारे पास एक WHO पेन स्केल है जिसके अनुसार हम दर्द की दवाई देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, फिर उसको बढ़ाते हैं अगर पेशेंट को टॉलरेंस नहीं मिलती है। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में दो पेशेंट के इलाज में वो अलग हो सकते हैं क्योंकि वो आता है कैंसर के बायोलॉजी के ऊपर। एक कैंसर का अलग अलग बायोलॉजी होता है।
0: ओके,
1: इसीलिए एक दो पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के जो प्रकारित होते हैं उन लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरह की ब्रेस्ट कैंसर है, उसके हिसाब से कीमोथेरेपी या ओवरथेरेपीज देती है।
0: और आपके एज ए फार्मासिस्ट नितिन कुमार, आपके अनुसार ये जो कीमोथेरेपी दवाइयां हैं वो क्या हैं, और ब्रेस्ट कैंसर के जो दो मरीज हैं बिल्कुल अलग अलग दवाइयां क्यों दी जाती हैं?
2: बिल्कुल, मैं डॉक्टर कमलेश की बातों से सहमत हूँ। दो मरीज के लिए एक जैसे कैंसर के लिए एक जैसी दवाई नहीं हो सकती। ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि कैंसर कौन से स्टेज पर है, किस टाइप का कैंसर है और किस ऑर्गन में कैंसर है। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ड्रग्स या मेडिसिन दवाइयों को चुनते हैं। तो एकदम से लोगों में कुछ भ्रांति है, जैसे कि एक तरह का कैंसर एक तरह की दवाई से और सबके ऊपर, सब मरीजों के ऊपर एक तरह से काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं मॉर्फिन की, मॉर्फिन एक पेन की एक दवाई है, क्योंकि सबसे पहले हमें कैंसर को समझना होगा। कैंसर के मरीजों को स्टेज टू और स्टेज थ्री के दौरान काफ़ी पेन महसूस होता है, क्योंकि कैंसर जब टाइम टू टाइम ग्रो होता है तो वो दूसरे नर्व्स को सप्रेस करता है, यहाँ तक कि कुछ ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है।
0: अच्छा।
2: और इस दौरान कैंसर पेशेंट्स को बहुत सारा पेन मिल सकता है। उसके लिए वी हैव सम पेन किलर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पैरासीटामोल, then we increase some intensity, we go to other, let's say diclofenac, and then we go to tramadol, and if we need we go up to morphine and fentanyl as well.
0: तो यहाँ पर बहुत सारी दवाइयों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त, खासकर उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन नहीं कहूँगा, एडवाइस दिए जा रहे हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। मॉरिशस में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे अधिकांश जगह है जहाँ पर लोग कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं, और ये जो कार्यक्रम है उन लोगों को एक आइडिया मिलेगा, खासकर कैंसर पेशेंट के साथ साथ उनके परिवार को भी पता चलेगा कि यहाँ पर कीमोथेरेपी और साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं किस तरह से, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, और ऐसी दवाइयाँ लेने से उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब डॉक्टर जी, वास्तव में ये कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? सब लोग कहते हैं, मैं मतलब जो कैंसर बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो कह रहे हैं हम लोग फ्रेंच में उसको शीमियो करने जा रहे हैं, कीमो करने जा रहे हैं, ये है क्या?
1: वास्तव में अगर सिंपल भाषा में कहें तो उस दवाई को इस्तेमाल करके

0: उस कर्क सेल्स को मार देना।
1: अच्छा।
0: लेकिन हमारी शरीर में जो अच्छा सेल्स हैं वो भी उससे पीड़ित होता है क्योंकि उसका मेन जो फंक्शन है वो है सेल्स को खत्म करना।
1: हाँ, मतलब जब वो कीमोथेरेपी के दौरान वो जो सेल्स को चुन करके नहीं मारते हैं, सभी सेल्स को मार देते हैं?
0: नहीं, जैसे हमने स्टडीज किया है लाइक बिफोर, तो उस हिसाब से वो दवाई लाइक मेनली वो कर्क सेल्स को मारती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो होता है, जैसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज, जैसे एक युद्ध होता है कोलैटरल डैमेज, तो जो अच्छा सेल है, हेल्दी सेल है, वो भी उससे पीड़ित होता है।
1: और श्री नितिन कुमार, आपके हिसाब से?
2: जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बातों से। सबसे पहले हमें कैंसर के इलाज को समझना होगा। कैंसर का इलाज केवल कीमोथेरेपी नहीं है। काफ़ी लोगों में भ्रांति है कि कैंसर का इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर कैन बी ट्रीटेड विद अ सर्जरी।
1: अच्छा।
2: इट कैन बी ट्रीटेड विद अ रेडियोग्राफी। इट कैन बी ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी, जैसे जिसको हम कीमोथेरेपी अभी बात कर रहे थे। इट कैन बी ट्रीटेड विद हार्मोन थेरेपी। एंड सो कीमोथेरेपी उन थेरेपीज में से एक है जिस जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्जरी में हम डायरेक्ट एक सेल्स को रिमूव कर देते हैं बॉडी से, जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको टारगेट करके रिमूव कर देते हैं। कीमोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है। कीमोथेरेपी में हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं, उनको हम ब्लड के थ्रू सिस्टम में पहुँचाकर हम कैंसर सेल्स को धीरे धीरे टारगेट करते हैं। तो इससे कैंसर सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो सेल्स डिवाइड होना कम हो जाते हैं और वो एकदम से ख़त्म भी हो सकते हैं।
1: इसका मतलब यह है कि कीमोथेरेपी मूल रूप से कैंसर सेल पर हमला करती है?
2: बिल्कुल।
1: अब जब हम कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं डॉक्टर वासु, उसके साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? क्या इसी वजह से हम मतलब बाल का झड़ना, जी मिचलाना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, ये सब बातें सुनने को मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं?
0: जैसे नितिन ने कहा कि वो कीमोथेरेपी वो ब्लड के थ्रू जाता है, तो जैसे मैंने पहली बार ही कहा उसका मेन टारगेट है मारना। तो हमारे शरीर में जब वो सर्कुलेट होता है तो कहाँ कहाँ पर इफेक्ट करता है वो तो रैंडम है। तो उस हिसाब से शायद कुछ लोगों को साइड इफेक्ट मिलता है, शायद कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी नहीं मिलता है, ये भी होता है। और लोगों का साइड इफेक्ट लोग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल से वारी
1: मतलब
0: होता
1: उनके शरीर पर डिपेंड करता है,
0: जैसे वो रिएक्ट करता है।
1: अच्छा,
0: इसीलिए वो साइड इफेक्ट होता है।
1: और श्री नितिन कुमार, आपका आपके अनुसार?
2: मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बात से। जब हम कैंसर कीमोथेरेपी का इस्तेमाल हम करते हैं, एक केमिकल को अपने शरीर में सिस्टम के थ्रू ब्लड के थ्रू हम पहुंचाते हैं, तो देन ये जो केमिकल है बॉडी में घूमता रहता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो इसका काम होता है कैंसर सेल्स को मारना, ढूंढ कर मारना। तो कैंसर सेल्स होती हैं जो फास्ट ग्रोइंग डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो शरीर में कहीं और जगह भी ऐसे सेल्स मौजूद रहते हैं जो कैंसर सेल्स नहीं हैं, जैसे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स, जैसे कि हमारे बोन मैरो, जैसे कि हमारी गट लाइनिंग। तो कैंसर कीमोथेरेपी में जो कीमो ड्रग्स होते हैं गलती से उन सेल्स को भी टारगेट कर देते हैं, जैसे डॉक्टर ने अभी मेंशन किया था कोलेट्रल डैमेज, ये बिल्कुल इसी तरह है। सो वो सेल्स जब डैमेज होते हैं तो साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे बालों का झड़ना। आपने कई बार सुना होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट में लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी का महसूस होना। इसमें काफ़ी सेल्स जो अच्छे सेल्स भी हैं, जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मरीज की होती है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है।
1: तो जब कोई कहता है कि उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसे खुद से ये अंदाज़ा नहीं लग मतलब वो महसूस नहीं करते हैं कि उसके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं?
2: जी बिल्कुल, हर किसी के साथ सेम साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन, मरीज टू मरीज, ये डिपेंड करता है।

0: कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स नहीं भी आते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर कि पेशेंट की एज क्या है, किस स्टेज का कैंसर है, किस ऑर्गन में कैंसर है, पेशेंट की स्वास्थ्य बिना कैंसर के कैसा है, उसमें खून की कमी है कि नहीं है, उसमें उनकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है। तो हर पेशेंट में ये अलग रहता है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सेम साइड इफ़ेक्ट्स मिलें दवाइयों के साथ।
1: अच्छा डॉक्टर जी, कितने बार एक पेशेंट को एक हफ्ते में या फिर एक दो हफ्ते में उनको, मतलब कितने बार उन लोगों को कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उसको जाना पड़ता है?
2: एक्चुअली ये उन लोगों के, जैसे मैंने कहा कि कर्क के बायोलॉजी पर निर्भर है तो उस हिसाब से वो एक ट्रीटमेंट रेजिमेन ने, जैसे पूरी दुनिया में एक गाइडलाइन है NCCN गाइडलाइन, उस हिसाब से डॉक्टरों वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम के एक हफ्ते में एक बार होता है, कुछ वो भी कुछ होता है कि ऐसे भी होता है कि कोई पेशेंट जो है वो कुछ बार तो वो दो बार भी करते हैं और समटाइम्स मोर।
1: अच्छा,
2: लेकिन जो भी ये होता है, जैसे हमने अब हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट्स हुआ, अगर ये सब हुआ तो वो केमो भी पोस्टपोन हो सकता है। जैसे कि केमो के स्टार्ट से पहले हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके पैरामीटर्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, ताकि उसके शरीर केमो को हैंडल कर सकते हैं। अगर केमो को हैंडल नहीं किया जा सकता तो पेशेंट को ये जो आज का सेशन है उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उसको पहले स्टेबिलाइज करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो होता है पेशेंट के लिए के मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही वीक होता है। मैंने कई बार कई पेशेंट को देखा कि वो लोग, मुझे फिर से आना पड़ेगा, फिर से ये सब करना पड़ेगा, उन लोगों के लिए काफ़ी भारी होता है। तो
1: और सुनितिन जी, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी दवाइयाँ कौन सी होती हैं?
0: जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा, जैसे ट्रास्टिजुमाब है, पाक्लिटाक्सल है, एक्चिनोमाइसिन डी है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग्स होती है। सो इसमें डिपेंड करता है कि किस स्टेज का कैंसर है और हम क्या एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं कैंसर में।
1: एक मरीज के लिए ये नाम सुनने से काफ़ी डरावने भी लग सकते हैं ना?
0: जी बिल्कुल, कुछ भ्रांतियों की वजह से ये नाम कुछ डरावने भी लग सकते हैं,
1: क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ही जब मतलब जो लिस्ट आपने दी है उसको पढ़ने में, उसका उच्चारण करने में भी मतलब प्रॉब्लम होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: और ये सब आप दोनों के दिमाग में है ऑलरेडी।
0: जी ये तो होना चाहिए।
1: तो आप लोग उसके एक पर्टिकुलर जो दवाई है उनके फंक्शन, उनकी मात्रा, उनके कितने मिलीग्राम, ये सब मतलब बहुत ही बारीकी के साथ मतलब आपको जानना चाहिए, और देना प्रेस्क्रिप्शन देते वक्त भी इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ना?
0: जी बिल्कुल, एज ए फार्मासिस्ट मैं कह सकता हूँ कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, इसी चीज़ के हमने सीखा है अभी तक कि कौन सी दवाई और कितने स्ट्रेंथ में और किस पेशेंट को ये जानी चाहिए और किस तरीके से और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दिस इज़ वॉट हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के पहले। ये एक फार्मासिस्ट का काम होता है, कैंसर फार्मासिस्ट, कीमो फार्मासिस्ट। तो हम इलाज के पहले ही ये चीज़ें एक टीम में, एक डॉक्टर के साथ, एक नर्स के साथ ही हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कौन सी ड्रग हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सी ड्रग हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दवाइयों के इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं जो हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एक यही काम है एक फार्मासिस्ट का डॉक्टर के साथ इन कीमोथेरेपी।
1: और डॉक्टर जी, आपके अनुसार जो अभी नितिन ने कहा है, आप लोग भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते होंगे?
2: हाँ, हम भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, और हमारी टीम में मेनली जो एक मेन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो ये सब कैलकुलेट करता है। हम लाइक टीम वर्क करते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और हमारे पास नर्सिंग

0: भी हैं ट्रेन कीमो देने के लिए, क्योंकि कुछ पेशेंट जो हैं वो हम सिर्फ जो रेगुलर वेन कैनुला से नहीं दे सकते, कुछ पेशेंट में हम या पीए पोत पोताकार जो कहते हैं पीएसी या पिकलाइन जो है उसका केयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो कैसे देना है, किस तरह से देना है, ये सब एक टीम वर्क है.
1: जो बिल्कुल इस वक्त हम बात कर रहे हैं कैंसर बीमारी से जुड़ी जो ट्रीटमेंट है और साथ ही साथ कीमोथेरेपी और उनकी दवाइयाँ किस तरह से लेनी चाहिए, इस पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु और फार्मासिस्ट श्री नितिन कुमार के साथ. अब बात थोड़ी सी दिलचस्प होती जा रही है. अगर हम लोग बात करेंगे जैसे आप लोग आपने कहा प्लेक्सी
2: पाक्लिटैक्सल
1: और ऐसी जो दो टाइप की जो कीमोथेरेपी के बारे में बात कर रही हैं, तो टामोक्सिफेन और एनास्ट्रोजोल और साथ ही साथ ट्रास्टुजुमाब जैसी जो दवाइयां हैं वो, इसके बारे में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि दवाइयां का नाम क्या है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि दवाइयां का काम क्या करने की कोशिश कर रही है.
2: जी बिल्कुल, जैसे शो की शुरुआत में हमने कहा था कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के इलाज हैं, जैसे कि सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, हॉर्मोन थेरेपी है. सो जैसे आपने अभी एक नाम दवाई का लिया टामोक्सिफेन. टामोक्सिफेन एक हॉर्मोन थेरेपी ड्रग है जो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में इस्तेमाल होती है. एंड आई थिंक डॉक्टर कमलेश इस दवाई के इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे.
1: हाँ डॉक्टर जी,
0: तो टामोक्सिफेन जो है वो तो हॉर्मोनल जो हॉर्मोन है उसके रिसेप्टर, हॉर्मोन जो है वो एस्ट्रोजन, उसके रिसेप्टर को वो मॉड्यूलेट करता है. तो अगर हम उसको टारगेट करें तो ब्रेस्ट कैंसर में उसने प्रूव किया है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा बायोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है. तो जो हॉर्मोनल एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक हॉर्मोनल थेरापी जिसका नाम है टामोक्सिफेन.
1: जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया जा रहे हैं शायद मेरे लिए नया है, लेकिन जो लोग कैंसर बीमारी से जूझ रही हैं या फिर पीड़ित हैं या फिर उनके परिवार उनकी दवाइयाँ खरीदते हैं या उनको लेकर के कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उनको लेकर के अस्पताल या फिर क्लिनिक जाते हैं, वे इन सभी दवाइयों से परिचित हैं. जहां बिल्कुल हम बात करेंगे इस आज की चर्चा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लेंगे एक ब्रेक.

0: जम्बुकुल आज की चर्चा कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं और बाद में इसका प्रसारण भी किया जाएगा एमबीसी टेलीविजन के तीसरे चैनल पर। और हमारा जो विषय है वो मॉरिशसिया संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है, किस तरह की कीमोथेरापी की जो ट्रीटमेंट की जाती है, कौन कौन सी दवाइयाँ ली जाती हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो मेन गेस्ट के रूप में आए हुए हैं डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु और साथ ही साथ फार्मासिस्ट श्री नितिन कुमार, फिर से आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। अब श्री नितिन, आप हमें ये बताइए कि ये तामोक्सिफेन होता क्या है, ये काफ़ी तकनीकी लगता है, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसे घर पर देख रहे जितने सारे लोग आसान भाषा में उसको आसानी तरीके से समझ सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे हमने शो की शुरुआत में जिक्र किया था कि कैंसर के इलाज के लिए अलग अलग तकनीकी का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं पहले भी कह रहा था शो में कि हम सर्जरी के थ्रू हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, कीमोथेरेपी के थ्रू हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, ऐसे ही हम एक हार्मोन थेरेपी के थ्रू भी कैंसर का इलाज कर सकते हैं। उस हार्मोन थेरेपी में एक ड्रग का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है टैमोक्सिफेन, और उस टैमोक्सिफेन एक हार्मोन को टारगेट करता है जो हार्मोन ज़रूरी होता है सिग्नलिंग के लिए इन ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम

0: सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं तो हम कैंसर सेल की ग्रोथ को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कमलेश इसके ऊपर कुछ प्रकाश
1: डालें। जी जी बिल्कुल,
2: जैसे नितिन जी ने कहा कि वो सिग्नल को ब्लॉक करता है, तो वो हमारे जो कैंसर सेल हैं कि अगर बायोलॉजी को डायग्नोज किया जाता है कि उसके पास वो होमोनल रिसेप्टर पॉजिटिव है, तब हम ये ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के ऊपर तो वो होमोनल रिसेप्टर वो निगेटिव होता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं होता, लेकिन जो पॉजिटिव हैं उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बायोलॉजी के ऊपर है और वो उसके रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है। लेकिन साथ साथ जैसे हमने कहा कि वो थेरापीज जो हैं उसके साइड इफेक्ट हैं, तो तामोक्सिफेन के भी साइड इफेक्ट होते हैं।
1: और नितिन जी, क्या ब्रेस्ट कैंसर हर मरीज को तामोक्सिफेन दी जाती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित जो हर महिला को तामोक्सिफेन देना ज़रूरी है?
0: जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि शो की शुरुआत में हमने कहा कि ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है अलग अलग मरीज के ऊपर, कैंसर का क्या स्टेज है, कैंसर मरीज की क्या एज है, उनके हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि सभी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को एक ही दवाई काम करेगी और समान तरीके से काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देर आर सो मैनी कीमोथेरेपी ड्रग्स विच कैन बी गिवन।
1: तो इसका मतलब है दो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है लेकिन उनकी बिल्कुल अलग अलग दवाइयाँ मिल सकती हैं।
0: जी बिल्कुल, इलाज उनका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है।
1: अब भयंकर भयंकर नाम यहाँ पर मुझे दिया गया है, एनास्ट्रोजोल, लेट्रोजोल और एक्जिमिस्टिन, ये ऐसे ऐसे नाम भी सुनते हैं, ये कहाँ फिट बैठते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये भी कीमोथेरेपी में इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। कीमोथेरेपी में भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, ये निर्भर करता है कि हम कैंसर की किस स्टेज में हैं, पेशेंट की क्या कंडीशन है, मरीज की क्या हालात है और किस ऑर्गन में, किस टिश्यू में ये कैंसर पनप रहा है, तो उसी हिसाब से हम अपनी दवाई का चुनाव करते हैं, उसी हिसाब से कैंसर की क्या पेशेंट की क्या कंडीशन है उसी हिसाब से हम दवाई को चुनते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हम दवाई का चुनाव करते हैं।
1: डॉक्टर जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी सारी दवाइयां क्यों हैं, लेकिन एक मरीज़ के नज़रिए से ये अभी भी बहुत ही उलझन भरा हुआ सा लगता है। डॉक्टर सिर्फ एक कैंसर की दवाई चुनकर हर किसी को क्यों नहीं दे सकते हैं?
2: क्योंकि जैसे हमने शो में कहा, नितिन जी ने भी कहा कि हर कैंसर के कहाँ पर हुआ है और जो हुआ है वो किस तरह की बायोलॉजी का है, तो वो हम बायोलॉजी से के रिजल्ट से ही पता चल सकता है कि वो कैसी है, फिर उस हिसाब से वो हम डिसाइड करते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है। इसीलिए हर कैंसर के लिए एक ही ट्रीटमेंट नहीं होता, और हम आज सिर्फ केमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। एक कैंसर के ऊपर शायद एक कैंसर के ऊपर कीमोथेरेपी भी निर्भर नहीं होता, हमें रेडियोथेरेपी करना पड़ता है, हमें इम्यूनोथेरेपी भी करना पड़ता है और स्टेजिंग भी देखना पड़ता है, जैसे कि हम क्या हम डायरेक्टली सर्जरी भी कर सकते हैं, ये सब प्रश्न होता है। तो क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो ये एक टीम वर्क होता है, उसका एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है जो हम बैठकर बात करते हैं कि पेशेंट के ये हुआ है ऐसे ऐसे है, तो ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, क्या हम गाइडलाइंस को अडियर कर रहे हैं, तो ये सब ये इंटरनल वर्क है। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अपने ट्रीटमेंट को एक दूसरे इंसान के ट्रीटमेंट से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपको जो हुआ है और वो दूसरे इंसान को जो हुआ है और कैसी डिग्री, कौन सी स्टेज, ऐसा ऐसा कौन सी बायोलॉजी, वो सब अलग होते हैं।
1: डॉक्टर जी, ऐसे भी पेशेंट होते हैं जहाँ पर कैंसर बीमारी से तो जूझ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वे अन्य बीमारियों से भी वे इसी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो वहाँ पर स्थिति कैसी होती है?
2: जो पेशेंट हैं जिसके पास डायबिटीज हाइपरटेंशन है, उनके सिचुएशन ज़्यादा जैसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दूसरी बीमारियां हैं जो वो केमोथेरेपी

0: और दूसरे थेरापीज को वीकन करता है।
1: अच्छा।
0: तो उस पेशेंट को हर तरफ से स्टेबलाइज करना पड़ता है और ज़्यादा देर से मो मॉनिटरिंग डिमांड होती है उस पेशेंट में।
2: जी, इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें दवाई का चुनाव करना चाहिए और पेशेंट की मॉनिटरिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि कीमोथेरेपी को बीच में रोकना पड़ सकता है क्योंकि साइड इफेक्ट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं, पेशेंट जो मरीज जो है ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा ही असर दिखा रहे हैं, तो हम कीमोथेरेपी को रोक भी सकते हैं, रोकना पड़ सकता है।
1: अच्छा, तो नितिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है टारगेटेड थेरेपी और हार्मोन थेरेपी, तो एक साथ दिया जा सकता है ये?
2: जी, ज़रूरी नहीं है कि दोनों थेरेपी को हम एक साथ इस्तेमाल करें, हम एक के बाद एक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हम टारगेटेड, डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से तरह का है और कौन से ऑर्गन में है और किस स्टेज पर है, उस हिसाब से हम दोनों में से किसी एक को पहले चुनेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होगा इस केस में।
1: डॉक्टर जी, एक गलतफहमी यहाँ पर दूर मैं करना चाहूँगा, लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई नई दवाई सामने आ गई है दुकान में और मंडी में और जो ज़्यादा असरदार हैं, जो ज़्यादा तेज़ हैं, तो आपको लगता है कि ये बेहतर होगी, क्या ये सच है?
0: दुकान में नहीं, फार्मासी में।
1: हाँ, वही है, फार्मासी में, सॉरी सॉरी, मैं अपने बात को फिर से कहता हूँ, दुकान, आई वांट टू से मार्केट में, मार्केट में एक नई दवाई सामने आई है जो ज्यादा असरदार है, तेज है, क्या ये सच है इस तरह से?
0: देखिए, स्वास्थ्य जो होता है, जैसे हम नई गाड़ी खरीदने के लिए ऐसे नहीं है, स्वास्थ्य जो एक साइंटिफिक अप्रोच जो उस पर निर्भर होता है, तो जो कैंसर भी है, अगर नई दवाई होती है तो किस केस में वो निर्भर होता है उस हिसाब से देना पड़ता है। जैसे कोई केसेस होता है वो पहले की दवाइयों से भी ट्रीट हो सकती हैं।
1: अच्छा।
0: जो नई दवाई है हमें देखना पड़ता है क्या देयर आर इनफ लिटरेचर्स टू बैक इट अप, आर देयर इनफ एविडेंसेस, इज इट वर्किंग इन द पॉपुलेशन और नॉट, तो ये सब देखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं।
1: इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग एज ए फार्मासिस्ट, आप लोगों को जो नई नई दवाइयाँ फार्मासी में आ रही है
2: जी, बिल्कुल,
1: मार्केट में, मंडी में, तो आप लोग अपने आप को अपडेट करते हैं?
2: जी बिल्कुल, हमें नया काम मिल जाता है, हमारा काम है अपने आप को अपडेट रखना नई नई दवाइयों, नए नए खोज से। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर कमलेश, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, दवाइयों के ऊपर काम होता रहता है बैकग्राउंड में, जैसे हम कोई दवाई अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो मरीज़ के लिए बेनिफिट तो है लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जा रहा है, तो साथ ही साथ मार्केट में कंपनियां इसके ऊपर शोध करती रहती हैं इन बैकग्राउंड, और धीरे धीरे इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाकर, उसके स्ट्रक्चर में, उसके केमिकल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे मार्केट में आप देखते होंगे अदर इन टेक्नोलॉजी, वी गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं, हर साल वो नई नई चीज़ें मार्केट में उतारते रहते हैं। ऐसे ही दवाइयों के बारे में भी है, अलग अलग तरह की कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इनके ऊपर शोध के ऊपर खूब सारा एफर्ट लगा कर उसमें उसको बेहतर बनाते हैं और मार्केट में एक नया उसका एक वर्जन लेकर आते हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं और शायद उसमें जो इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एट द सेम टाइम।
1: जी बिल्कुल, हमने बात की महत्वपूर्ण विषय के बारे में, खासकर उन दवाइयों के बारे में जो खुद कैंसर का इलाज करती हैं, लेकिन डॉक्टर जी आप हमें ये बताइए कि इन दवाइयों के सेवन करने से कौन सा दर्द होता है जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पेशेंट्स महसूस करते हैं?
0: जो दर्द होता है आज तक कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है वो एक चैलेंजिंग स्ट्रैटेजी है, तो वो दर्द को कम करने के लिए वो पेशेंट टू पेशेंट बनता है।
1: अच्छा।
0: कुछ पेशेंट के साइड इफेक्ट और केमोथेरेपी के बाद हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट को दर्द ही नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है, कुछ पेशेंट को टॉलरेबल दर्द होता है, उन लोगों को दर्द होता है लेकिन दवाई देने की ज़रूरत नहीं।

0: ये कुछ पेशेंट को दवाई देना पड़ना पड़ता है, हर बार अगर दर्द हुआ तो दवाई देनी पड़ती है. और जैसे कि कुछ कर्क पेशेंट्स जो पालिएटिव केयर में जाता है जिनकी उम्मीद नहीं,
1: हाँ,
0: तो उन लोगों में हम पेन मैनेजमेंट करते हैं. जैसे
1: पेन मैनेजमेंट, ये भी होता है?
0: हाँ, हर पेशेंट में पेन मैनेजमेंट होता है.
1: पेन मैनेजमेंट का मतलब,
0: जैसे दर्द होता है, जैसे हमने शुरुआत के शुरुआत में कहा था कि पैरासिटामोल, जिक्लोफेनाक, फिर ट्रामाडोल, वो WHO पेन लादर के ऊपर होता है. तो कैंसर पेशेंट में भी वो निर्भर होता है कि उनके पेन क्या है, कौन सी स्केलिंग में है. हमारे स्केलिंग है 0 to 10.
1: अच्छा,
0: तो उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या देना पड़ता है, क्या नहीं देना पड़ता है, और कौन सी दवाई काम भी कर रही है उस पेशेंट के ऊपर.
1: और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर दर्द को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब आपके यहाँ आते हैं या फिर उनके परिवार आते हैं आपके यहाँ दवाइयाँ खरीदने के लिए, तो क्या वे सवालात करते हैं कि इससे मुझे दर्द ज़्यादा होगा, इससे मुझे ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इससे मुझे, तब वहाँ पर आप एज ए फार्मासिस्ट कौन से निर्देश, कौन सी जो सलाह हैं आप देते हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बात से. पेन मैनेजमेंट इन कैंसर थेरेपी इज़ अ चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि कैसे पेन को हम मैनेज करें पेशेंट के साथ. लेकिन मैं कहूँगा कि कीमियोथेरेपी में इतना पेन नहीं होता है. वो पेन जो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं कि लोग कीमियोथेरेपी लेते हैं इट कैन बी वेरी पेनफुल, इसमें बहुत दर्द होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कीमियोथेरेपी कैन बी पेनलेस, इट इज़ एज सिंपल एज टेकिंग एन इंजेक्शन. लेट्स से आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपने कभी सलाइन लिया होगा किसी ने, तो वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है. कीमोथेरेपी भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस कीमोथेरेपी का इंजेक्शन उस नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर दिया जाता है और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है. इसमें क्या होता है कि एक साइकिल होती है जिसमें दो तीन तरह की दवाइयाँ होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि दो तीन तरह की दवाइयाँ हो सकता है एक दवाई है या दो है या फिर तीन भी है. ये डिपेंड करता है कि मरीज कौन सा ट्रीटमेंट ले रहा है, किस स्टेज पर है, कैसा उसका हालात है, उसके ऊपर निर्भर करता है. लेकिन कीमोथेरेपी एक पेनलेस तरीका है कैंसर को मिटाने का. हाँ, वो जो दर्द की भ्रांति है, मैं कहूँगा कि एक कैंसर से रिलेटेड है, क्योंकि कैंसर पहले फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, जब वो थर्ड स्टेज में ऐसे मूव होने लग जाता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में आ जाता है, तब कैंसर जब सेल्स ग्रो करने लग जाती हैं किसी ऑर्गन के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर, वो आसपास के जो टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं उनको सप्रेस करने लग जाते हैं. और जब वो उन नर्व्स को प्रेस करने लग जाते हैं, सप्रेस करने लग जाते हैं, वहाँ पर उन नर्व्स के थ्रू पेन क्रिएट होता है. जब कैंसर अपने अनकंट्रोल्ड मैनर में आता है, तब उस पेन को मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. उस पेन को मैनेज करने के लिए, जैसे डॉक्टर कमलेश ने अभी यहाँ पर कहा कि डिफरेंट तरीके के लेवल के हमारे पास दर्द की दवाइयाँ हैं, जो शुरुआत होती है पैरासिटामोल से, जो काफ़ी सिंपल है, लोग लेते हैं. उसके बाद डिक्लोफिनेक आ जाता है, और उसके बाद में फिर अगर ज़्यादा ही पेन है, नर्व पेन है, वी हैव प्रिगाबलिन फॉर दैट, फॉर नर्व पेन. वी हैव ट्रामाडोल, वी मे हैव टू मूव टू मॉर्फिन एंड फेंटानिल समटाइम्स. सो मॉर्फिन की ये भी डिफरेंट तरीके से मरीज को हम दे सकते हैं.
1: हाँ, जैसे इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा. जब दर्द ज़्यादा होता है, लोग अक्सर मॉर्फिन और फेंटानाइल जैसे नाम सुनते हैं, वे लोग लेते हैं, ये दवाइयाँ क्या हैं?
2: जी, ये पेन को मैनेज करने के लिए, जब काफ़ी ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, ये ओपोइड्स होते हैं, ये एक तरह के ये पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं.
1: अच्छा,
2: तो मॉर्फिन जो है वो डिफरेंट डोसेज फॉर्म में उपलब्ध हो सकता है, जैसे कि हम डायरेक्ट इंजेक्शन मरीज को दे सकते हैं, और मॉर्फिन की कैप्सूल्स, टैबलेट्स अवेलेबल हैं. ये इट इज़ अवेलेबल इन सिरप फॉर्म एज वेल. सो ये मरीज की हालत पर डिपेंड करता है कि वो टैबलेट को स्वालो नहीं कर सकता है तो हम उसको इंजेक्शंस दे सकते हैं. अगर टैबलेट नहीं ले सकता है तो हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में, जैसे कप सिरप्स होते हैं, हम लिक्विड फॉर्म में उसको दे सकते हैं. ऐसे ही फेंटानिल के बारे में भी मैं कहूँगा, फेंटानिल के इंजेक्शन से हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में. और फेंटानिल के मैं कहूँगा कि it is available in patches form as well.

0: ज़रूरी नहीं है कि आप इस पेन मैनेजमेंट के लिए रोज़ दवाइयां लें या फिर रोज़ 2 से 3 बार दिन में दवाइयां लें। आप एक पैच को आप प्लेस कर सकते हैं कहीं किसी बॉडी पार्ट पर और वो एक पैच लगभग 3 दिन के लिए काम करता है, 72 आवर्स के लिए। आफ्टर 72 आवर्स आप अपने उस पैच को चेंज कर सकते हैं। तो इस 3 दिन के दौरान आपको पेन महसूस कम होगा।
1: और इसके बारे में मोर्फिन और फेंटानिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जी?
2: जैसे नितिन ने कहा, मोर्फिन को हम जैसे केस टू केस देते हैं और हमें देखना पड़ता है कि वो काम कर रहा है या नहीं। और मोर्फिन के बारे में मैं लगभग ये ऐड करूँगा कि उसके जो कॉमन साइड इफेक्ट है हमने देखा कर्क पेशेंट में, तो वो कंस्टिपेशन है, तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि वो कंस्टिपेशन को कैसे कंट्रोल करे। और फेंटानिल पैच जैसे नितिन ने कहा कि वो पैच लगाते हैं और लगभग 72 घंटों में वो स्लो रिलीज होता है ताकि वो पेन कंट्रोल करें।
1: डॉक्टर जी, मोर्फिन देने का मतलब ये है कि इंसान की मौत होने जा रही है?
2: नहीं नहीं, मोर्फिन देने का मतलब,
1: क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ।
2: क्योंकि मोर्फिन देने का एम जो है हम डर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान मरने जा रहा है। मोर्फिन देने का मतलब है कि कुछ लोग के कैंसर शायद स्टेज 2 स्टेज 3 भी जो हो सकता है, लेकिन उसे वो पेन इंटॉलरेंस होता है, तो हम देते हैं ताकि वो कम हो जाए। क्योंकि पेशेंट्स जो हैं पोस्ट ऑपरेटिव जो मेजर सर्जरीज भी होता है उसके बाद में हम देते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड कंट्रोल में। तो अगर वो हम देते हैं तो उसका मतलब नहीं है कि वो इंसान मरने वाला है, वो सिर्फ उसकी डर को कंट्रोल में काबू में रखने के लिए करते हैं।
1: नितिन जी, एक बहुत बड़ी चिंता के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स। क्या कैंसर की दवाइयाँ में हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं?
0: जी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैंसर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि जैसा डॉक्टर कमलेश ने शुरुआत में ही मेंशन किया था, कोलेट्रल डैमेज, अगर हम कुछ बुरी सेल्स को टारगेट करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि दवाइयां सिर्फ बुरी सेल्स को ही ख़त्म कर पाएंगी, कुछ अच्छी सेल्स भी उसमें कोलेट्रल डैमेज में ख़त्म हो सकती हैं। वो अच्छी सेल्स जैसे होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स में बालों का झड़ना, और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के हो सकते हैं, उल्टी और डायरिया हो सकता है, और मरीज का काफ़ी कमज़ोर महसूस करना, क्योंकि मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक मरीज में ही आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट ही ना आए या किसी को सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिले। हो सकता है, डिपेंड करता है कि मरीज टू मरीज की कौन सा साइड इफ़ेक्ट उसको मिल सकता है, उसकी बॉडी की कंडीशन, कैंसर का स्टेज, ये सब उसके ऊपर, एज फैक्टर, यू नो, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब उसके ऊपर मैटर करता है इसके ऊपर।
1: डॉक्टर जी, जितने सारे, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम का, आप जितने सारे जो लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खासकर कैंसर बीमारी से जूझ रहे पेशेंट्स जो हैं उनके परिवार, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरा संदेश थोड़ा लंबा है, तो मैं संदेश ये
1: संक्षिप्त रूप में
2: तो मैं ये कहूँगा कि जैसे नितिन जी ने कहा, वो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं लोगों से वारी होता है, तो उस हिसाब से हम केमोथेरेपी के बाद दवाई देते हैं ताकि वो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाए, वो साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में हो जाए और वो कंट्रोलेबल हो जाए। तो आप अपने आप जब आप केमोथेरेपी को रिसीव कर रहे हैं तो दूसरे लोग के साथ कंपेयर ना कीजिए, आपकी केस दूसरे लोगों के केस से बिल्कुल अलग है, उसकी रिएक्शन अलग है और जैसे आप उसकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी अलग है। तो अगर आप कर्क से पीड़ित है, कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं, तो आपकी मानसिक संतुलन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको विश्वास रखना चाहिए कि आप ठीक होंगे।
1: और नितिन जी, जितने सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बातों से। मानसिक संतुलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यू नो, देर आर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में कि कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसमें काफ़ी सारा

0: दर्द हो सकता है और मरीज की मौत तक हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी मैं कहूँगा कि एक पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है और साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम ही साइड इफ़ेक्ट्स हो, तो सब केस टू केस वेरी करता है। तो मैं मेरा मानना है कि ये आप इसको अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और घबराएं बिल्कुल नहीं, अपना मानसिक संतुलन आप स्ट्रॉन्ग रखें और इसको कोर्स को फॉलो करने में अपना ध्यान ज़्यादा दें, ना कि लोगों की भ्रांतियों में।
1: तो श्री नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर कमलेश सिंह वासु बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आए और कैंसर बीमारी से जुड़ी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात की, साइड इफ़ेक्ट्स और दवाइयों के बारे में बात की, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मनीषा कोइराला, सोनाली बेंड्रे और ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जहाँ पर कैंसर बीमारी से जूझने के बाद अपने अंदर की जो मानसिक शक्ति है उसको सुदृढ़ करके वे आगे बढ़े और आज के समय में वे लोग मोटिवेशनल स्पीकर इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, ठीक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान कर्क रोग जैसी बीमारी से गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद है। अगर आप अपने अंदर में आपकी जो जीने की जो अदम्य इच्छा है जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा, अगर उस जिज्ञासा को और ज़्यादा सशक्त बनाएंगे तो आपकी भी जीत होगी, जिसे हम कहते हैं कि अहम अस्मि योद्धा न कदापि खंडितः। तो इसी के साथ हमारे आज की चर्चा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार और आदाब।
2: आज की चर्चा ORM3 रेडियो।

0: याचना के साथ आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। रुडविक्स में 26 साल की महिला की मृत्यु, चाकू लगने से हुई 26 साल की इस बस कंडक्टर ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। वोश बोंजू रहने वाली इस महिला पर 27 साल के उसके साथी ने चाकू से वार किया। मोलू में रहने वाले इस मैकेनिशियन को गिरफ्तार करके पुलिस की हिरासत में ही रखा गया है। कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये इंतज़ार उनके जख्मों को और कुरेदता है और उनके दर्द को और बढ़ाता है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य नहीं है और इसके कारणों का पता लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सवम का शुभारंभ हो रहा है। ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ। कल 13 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक समारोह लगेगा। समापन अगले 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा। विदेश में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है, जिसके बाद उस पाइपलाइन को बंद करवा दिया गया है। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Mana.

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। ये सच है कि पूरे विश्व में पूरी दुनिया में मॉरिशस के सप्तरंगी माटी की बहुत चर्चा होती है, लेकिन साथ ही साथ मॉरिशस की संस्कृति के बारे में भी जो हजारों न सिर्फ सात रंग के अपितु हजारों रंग के हैं कि बहुत बात होती है। और खासकर जब हमारे त्योहारों की बात होती है, जब किस तरह से यहाँ पर लोग जीते हैं और किस तरह से एकजुट होकर सभी त्योहार मनाते हैं, इसकी भी बहुत चर्चा होती है। आप भारत में जाएंगे तो भारत के विभिन्न इलाकों में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जब आप मॉरिशस में आते हैं तो पूरे देश में सभी के सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और एक जो आने वाला है गणपति त्योहार, गणपति महोत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। गणेश चतुर्थी तो उस महोत्सव में सिर्फ एक दिन की बात है, लेकिन गणेश महोत्सव तो कितने दिनों तक चलता है। So, आज हम इस त्योहार का एक भाग लेकर आपके सामने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोतागण हैं वे भाग लें। और हम बात करेंगे उन जगहों की जहां पर विसर्जन किया जाता है। हम पूरे के पूरे पद्धति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पूरे की पूरी रीति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आप सिर्फ हमें फोन करके बताएं कि जहां पर आप रहते हैं वहां से किस स्थान की ओर विसर्जन के लिए लोग प्रस्थान करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि जहां पर मैं रहता हूं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि पाल्मा रोड में जाकर मैं चतुर्थी के दिन को पूरे जिस तरह से लोग सड़क में आकर, दोनों तरह से सड़कों में आकर उस प्रोसेशन की जुलूस की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ पर सैकड़ों घरों से निकलते हुए गणपति एक एक जुलूस बनकर प्रस्थान करते हैं। और कहाँ जाते हैं? पाल्मा के विसर्जन स्थान, जहाँ पर नदी है वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं और कुछ लोग तो फीका फ्लाक तक जाते हैं। सो आप हमें फोन करके बताएं कि आपके यहाँ जो विसर्जन स्थान है वो कौन सा है और उनसे जुड़ी हुई यादें आप हमें बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर 402-8070 पर है।

0: हम अपने श्रोता को ज्यादा लाइन पर नहीं ठहराएंगे, चले हम मिलते हैं इनसे। हेलो,
1: जय सियाराम भाई जी।
0: जय सियाराम माला जी।
1: जी हाँ
0: माला जी, सब ठीक है ईश्वर की दया से, श्री राम जी की कृपा से। माला जी आप बताएं कि आप कहाँ पर रहती हैं?
1: मैं कातोबोन बासा कातोबोन रहती हूँ।
0: अच्छा, और आप विसर्जन किस तरह से और कहाँ पर जाकर मनाते हैं?
1: इस वक्त हम फिकाफ्लाक जाते हैं, पर पहले हम बुसोर जाते थे।
0: बुसोर?
1: जी, बुसोर जो है पियाफों।
0: पियाफों
1: वो जो नदी है वहाँ भी सज्जन नहीं जाते। पर जब मैं छोटी थी तो क्यूपी में रहती थी शादी से पहले, तो वहाँ पर ज्यादातर मराठी होते थे, गणपति करते थे, पर वहाँ पर नदी विसर्जन के लिए नहीं था, तो ज्यादातर लोग या तो पियाफों आते थे या लावानी रेनियो।
0: आप जब छोटी थी तो कहाँ पर रहती थी?
1: क्यूपी।
0: क्योपिप। अब क्योपिप में जो नदियां हैं उनका उनकी गहराई तो बहुत ही कम होती होगी, क्योंकि वहां पर
1: जी
0: से
1: हाँ, इसीलिए
0: अब जब तक कि थोड़ी सी गहराई न मिले तो विसर्जन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जाहिर है कि क्योपिप के इलाके में विसर्जन करना बहुत ही मुश्किल होगा।
1: जी, तब हम लावानी आए थे।
0: हाँ, लावानी वाकवा बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है।
1: हम पहले तो ऐसे नहीं थे, पर अब तो ज्यादा सुविधा हो रही है।
0: हम हमारा एक ख्वाब है, हमारी एक ख्वाहिश है कि एक दिन हम वहाँ पर जाकर विसर्जन देखें। हमें बहुत से लोगों ने कहा कि भाई जी यहाँ पर आए और यहाँ पर विसर्जन देखें किस तरह से होता है, लेकिन आज तक पापा का बुलावा वहाँ पर नहीं आया है। लेकिन हमारी एक सपना है कि हम एक दिन वहाँ पर जाकर विसर्जन में भाग लें। सो आजकल आप विसर्जन कहाँ पर कर रही हैं? फिकाफ्लाक में आपने कहा?
1: फिकाफ्लाक या तो फिकाफ्लाक के बाद में आया ना।
0: हाँ,
1: तो पहले वहाँ पर नहीं करते थे विसर्जन।
0: हाँ,
1: किस पियाफो करते थे वासी के लिए, अब तो फिकाफ्लाक जाते हैं।
0: हाँ, पियाफो में जो आलम वहाँ पर होता है, जो वातावरण होता है, जितने सारे हजारों की संख्या में लोग काफी सवेरे से, और इसके कारण जो ट्रैफिक जाम भी होता है दोनों तरफ से, जो कार्टोबोन से निकलकर फिकाफ्लाक की ओर बॉम्बू की ओर उतरते हैं, या तो
1: ब्राजील से भी लोग आते हैं। हाँ, वाकुआ से, बहुत जगह से लोग आते थे।
0: और जैसे कि गंगा तालाब में वातावरण होता है, जब महाशिवरात्रि होती है, लोग आकर खाना बांटते हैं

0: है, वहाँ पर म्यूजिक भी चलता है, साउंड सिस्टम भी होता है. I've seen no other place. I've seen no other place जिस तरह से PFO में किया जाता है विसर्जन. बहुत समरा जी, ये यादें आपके कारण उम्र आई, और जैसे कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं. सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और आपको गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं.
1: आप भी सबको गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्याराम. ओम गण गणपतये नमः.
0: ओम गण गणपतये नमः.

सो इस तरह से आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 402-807-0 पर, और आप भी हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर जाकर विसर्जन करते हैं और वहाँ का वातावरण कैसा होता है। यह गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन किरणों पर भाई संजय के साथ।

गीत गाथा देश की। आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम देश के बारे में बात कर रहे हैं, देश के उन जगहों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर विसर्जन किया जाता है और जहां पर हजारों की संख्या में मॉरिशस और विदेश से आए हुए पर्यटक भी वहां पर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, एक ही नेशन, एक ही जाति, जैसे सब एक दूसरे से मिलते हैं, खाना पाना सब, खान पान सब में बांटा जाता है।

बहुत शांति का प्रतीक यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी उस पल में हमें जीने को हमें अनुभव करने को मिलता है। अभी अभी कुछ समय पहले माला जी के साथ बात करते हुए हमने पीएफओ के बारे में बात की, हमने मेलावानी वाकवा के बारे में बात की। इन जगहों के अलावा और बहुत से ऐसी जगह हैं मॉरिशस में जहाँ पर कुछ पलों के लिए जैसे कि पूरी दुनिया प्रेम भक्ति स्नेह और श्रद्धा के बंधनों से बंध जाते हैं और कुछ जगहों पर जहाँ पर हम विसर्जन को विटनेस करने गए हैं देखने गए हैं बैदेदाम पोर्टविस एक बार मैं वहाँ पर गया हूँ वहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा रिवेजपुस के जहाँ पर लफलोगा ब्रिज है वहाँ पर हमने एक बार हम वहाँ पर गए हुए हैं। रियोम्बेल में भी एक बार हमने देखा है। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं और निकलकर विसर्जन के लिए किस तट पर जाते हैं किस नदी पर जाते हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-808-70 पर।

0: सारे चार बजने वाले हैं। चले हम मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: हाँ मैं खुशबू से बोल रही हूँ मानती। नमस्कार, जय सियाराम।
0: जय सियाराम आपको भी मानती।
1: हाँ मानती
0: बोलिए मानती।
1: हाँ यहाँ खुशबुओं में बहुत भीड़ लगता है।
0: ओके
1: हाँ बहुत भीड़।
0: कौन कौन से गांवों से लोग वहाँ पर आते हैं?
1: बहुत नजदीक गांव से प्लेंडे हो रिविया जी हो और मुनुआ जी यहाँ लामोगी बहुत गाँव से।
0: अच्छा तो जितने में नॉर्थ ईस्ट इलाके के लोग होते हैं खुशनो आते हैं विसर्जन के लिए।
1: हाँ वही खुशनो गांव में बहुत भीड़ लगता है। पुलिस सब भी आते हैं वहाँ पर। चल नहीं सकते रास्ते में, इतने गाड़ी होता है कि हम नहीं चल सकते। बहुत बोर बोर में चलते हैं।
0: इसीलिए अनुशासन की बहुत जरूरत है। जब लोग उस तरफ से आए तो उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि पार्किंग भी ठीक तरह से अपनी गाड़ियों को पार्क करें और जिससे कि लोगों को दिक्कत ना मिले। और साथ ही साथ जो लोग जान लें कि उस समय विसर्जन होने वाला है और ट्रैफिक जाम होने वाले हैं तो उस इलाके को वो अवॉइड कर सकते हैं अगर वो विसर्जन में भाग नहीं ले रहे हैं तो।
1: हाँ 3 बजे के समय, शाम के समय, अब तो रेलिंग बहुत बहुत धीरे धीरे मोटर जा रही है बहुत लोग।
0: हाँ।
1: और इतना वहाँ पर इतना लोग हैं, खाना पीना सब वहाँ डाल देते हैं।
0: हाँ।
1: बहुत सुंदर वातावरण लगता है वहाँ पर।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: हाँ
0: यानी कि धर्म के साथ साथ सेवा भी होती है और
1: हाँ
0: और एकता की भावना वहाँ पर उत्पन्न होती है।
1: हाँ,
0: सभी
1: हाँ।
0: लोगों के बीच तो अच्छी बात है। हाँ तो आपने कहा कि जो उत्तर पूर्व के इलाके में रहती हैं रिविया जोंपा बालू मोलवाजी रोशनुआ प्लेंडेगोश सब लोग वहाँ पर आते हैं प्लेंडेगोश।
1: हाँ,
0: और विसर्जन हाँ। के लिए वो समुद्र में जाते हैं।
1: हाँ विसर्जन के लिए समुद्र बहुत बड़ा है ना वहाँ खुशनुआ गांव में।
0: हाँ,
1: तो वहाँ बहुत लोग बहुत सब जा सकते हैं वहाँ पर।
0: बहुत अच्छी बात।
1: हाँ,
0: माता जी आपने ये सब जानकारियाँ हमें दी और हमें यकीन के जितने भी लोग इस अभी आपको सुन रहे होंगे मन ही मन में वो अंदाज़ा लगा रहे होंगे किस तरह का वातावरण होने वाला है इस मंगलवार की शाम को।
1: मंगलवार
0: नमस्कार
1: नमस्कार भाई
0: गणपति बाप्पा मोरया।

0: सो अभी तक जितने भी जगहों की चर्चा हुई हैं पीएफओं जो लोग कैटरबोन के इलाके में रहते हैं पाल्मा के इलाके में रहते हैं हमने चर्चा की लवानी वाक्वा जो सेंट्रल भाग में रहते हैं और अभी अभी मानती जी ने बात की होशनुआ इलाके जहां पर विसर्जन किया जाता है उन लोगों के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इलाकों में रहते हैं चलिए हम इनसे बात करते हैं हेलो
1: हेलो नमस्ते भैया
0: नमस्कार रंजन जी कैसे हुआ बोला था
1: अच्छा भैया
0: अच्छा अच्छा बोला कि आप कहाँ के हुआ
1: हम मेलरोज गांव के हैं
0: मेलरोज गांव के
1: और मेलरोज से हमने निकल के जाए
0: मोंटाइब्लांश
1: विसर्जन करे
0: मोंटाइब्लांश में एक पोंट बाते जो उनका नाम है चिपों
1: चिपों
0: हाँ
1: वहाँ से अभी थोड़े दिन के बाद
0: हाँ
1: तो जाटोन जब बिलमोर
0: अच्छा
1: बिलमोर जाटोन जब यहाँ पर कब पनिया दहेला कब थोड़ा सा पानी
0: थोड़ा कम हो जाएगा हाँ यानी कि नदी में पानी कम होकर बाटे तो ज्यादातर लोग अब नदी में नहीं जाकर अब
1: समुद्र में
0: और कौन समुद्र में
1: बिलमोर
0: अच्छा अब बिलमोर में तब बहुत भारी भीड़ लगी
1: बहुत बहुत बहुत बड़ा मेला
0: हाँ तो बिलमोर में सिर्फ मोंटाइब्लांश के लोग जा रहे हैं या मेलरोज की या तो
1: मेलरोज मोंटाइब्लांश पाके
0: लेस के
1: ओलिविया इस सब कोई
0: अच्छा ये सब लोग वहीं पर जाने जा
1: वहीं जाने जा हाँ
0: अब तो काफी भीड़ लगी वहाँ पर
1: हाँ बहुत बहुत जनता लोग रहेला और हाँ, बहुत खुशी की बात बा
0: हाँ
1: उतना जना तो अब जो संगतियाँ रहल आगे के लिए कोल कोले जाए सब
0: हाँ सब वहाँ पर मिले
1: लोग भेटा जा रहा
0: सब लोग भेटा जा रहा और साथ में विसर्जन होला धर्म की बात होला खान पान सब होला हाँ तो ये सब जानकारी ठीक है क्योंकि जो लोग उस दिन तो छुट्टी के दिन है अच्छा बात की छुट्टी के दिन है लेकिन साथ ही साथ जो लोग सोच रहे थे कि जैन से लामे है उस दिन तो अपने आप को तैयार कर लिए जबकि नहीं उस दिन बिलमोर नहीं जाए के नहीं तो ट्रैफिक में फंस जैन से लेकिन लेकिन जो लोग विसर्जन के लिए जाते हैं जा अपने आप को तैयार कर लिए जा कि ट्रैफिक ब्लॉके हुई हाँ हर जैसे कि जब गंगा तालाब जाला जाता एक गुस्पे रहला सब कोई अब मानसिक तरीके से अपने आप के तैयार कर ले जा कि ट्रैफिक जाम हुई तो मंगलवार की शाम को इन इन इलाकों में ट्रैफिक जाम हुई अपने आप को तैयार कर लें और लेकिन साथ ही साथ चहला सोचे कि ट्रैफिक के पार्किंग के बारे में ठीक से सोचा सिर्फ अपन लिए नहीं सोचा अन्य लोगों के लिए सोचा और जो यातायात है जो नॉर्मल ट्रैफिक है ओके कोई कम से कम दिक्कत हुई और साथ ही साथ जहाँ तक पर्यावरण की बात है किस तरह से हमने पर्यावरण की रक्षा सकब जा करें हाँ क्योंकि जब तक की मूर्ति मिट्टी से बनल होए तब पर्यावरण के कोई नुकसान न पहुंची लेकिन अगर इसके अलावा अगर मूर्ति में कुछ और कुछ डाल जाए तो ओके निकाल के तब जाकर विसर्जन कर हाँ निकाल के तब विसर्जन कर बहुत अच्छा बा बहुत अच्छा बा जब तक नेचुरल पूरा का पूरा नेचुरल रही बेहतर हाँ सो रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद और मेलरोज काउची मिलिटेर बेले रिविया सेश ओलिविया केवल नगर जितने भी लोग उस इलाके में हवन जा सबके हमारी ओर से गणपति बापा मोरिया
1: आपको भी भैया गणपति बापा मोरिया
0: मंगल मूर्ति मोरिया

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा देश की। आज प्रोग्राम कुछ अलग है क्योंकि दो दिन के बाद हम गणेश महोत्सव मनाने वाले हैं और विशेष तौर पर हमने इस प्रोग्राम के दरमियान उन जगहों की बात की जहां पर विसर्जन किया जाता है। विसर्जन अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही फिलोसॉफिकल है क्योंकि गणपति को हम मिट्टी से बनाते हैं। दो दिनों के लिए, तीन दिनों के लिए, दस दिनों के लिए हम उसकी पूजा पाठ उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, श्रृंगार करते हैं और पूजा के बाद हम उसका विसर्जन करते हैं। जहाँ से वो आया वहीं पर पांच तत्वों को हम वापस जाकर छोड़ देते हैं। जल जल से मिल जाता है, धरती धरती से मिल जाती है, आकाश आकाश के साथ मिल जाता है, अग्नि भी अपनी जगह पर चली जाती हैं और वायु भी अपनी जगह पर। इसका ये महत्व है कि इसका ये अर्थ है कि यही जीवन की सच्चाई है कि एक दिन हमारा जन्म हुआ है और एक दिन हम सबों को जाना है। जितना भी हम इस शरीर से प्यार कर लें, जितना भी हम चाहें उसे बचाने की कोशिश करें, लेकिन जाना तो सबको है। गणपति भी आएंगे और वे भी चले जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, बिल्कुल नहीं। सो प्रकाशवती जी ने हमें मैसेज किया है फ्रॉम बेल्जियम, उनकी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं उनके सभी परिवारों को जो यहाँ पर मॉरिशस में हैं। और जितने भी लोग हमें विदेश में सुन रहे हैं, आप सबों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि आप अपने देश से दूर हैं, लेकिन आप अपनी संस्कृति को अपने दिल में, अपने जीवन में संजोए रखें, ऐसी हमारी मनोकामना। और गणपति जी का आशीर्वाद आप सबों पर बना रहे।

0: 4:52 चले हम आज अपनी अंतिम श्रोता से मिलते हैं। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: गणपति बप्पा मोरिया
1: मोरिया
0: मंगल मूर्ति मोरिया
1: मोरिया।
0: आपका नाम सरोजिनी
1: सरोजिनी हाँ।
0: आप कहाँ के रहने वाली हैं?
1: गौंबा
0: के रहने वाली हैं। सो गौंबा के रहने वाले लोग विसर्जन के लिए कहाँ पर जाते हैं?
1: गुली रिवर बुआशेरी
0: में हम बिल्डिंग जानते हैं बुआशेरी में हम बुआशेरी टी फैक्ट्री जानते हैं
1: हाँ।
0: लेकिन गुली रिवर पहली बार के सुन रहे हैं।
1: गुली रिवर
0: हाँ
1: नियर टू
0: गौंबा से। अच्छा अच्छा तो जितने भी बुआशेरी के लोग होते हैं गौंबा के लोग होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं विसर्जन के लिए। अब वहाँ तो बहुत ही प्यारी जगह है ग्रीनरी यानी कि हरियाली ना
1: हरदम जाती हूँ बुआशेरी
0: और वहाँ पर चाय के खेत होते हैं। ओके ओके तो वहाँ का वातावरण कैसा होता है?
1: अच्छा
0: ओके और कितने सालों से आप वहाँ पर विसर्जन के लिए जाती हैं?
1: विसर्जन 50
0: years 50 साल से
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा हाँ। बहुत और वहाँ पर विसर्जन के लिए सुविधा होती है क्योंकि हाँ। जो बहुत से जो मिनिस्ट्रीज ने सब कुछ एम्बेलिश किया है साफ हाँ। कर देते हैं और तो
1: इस साल तो
0: हाँ हाँ
1: गणपति
0: बुआशेरी नेशनल लेवल पर होने वाला
1: हाँ।
0: है तो यानी कि और भी ज्यादा तैयारी हुई होगी तो और जब नौजवान लोग जाते हैं और विसर्जन के लिए झाकरी वहाँ पर अनेक टोली
1: हाँ, भजन
0: हाँ,
1: हाँ सब करती हूँ
0: खान पान संगीत
1: सब संगीत
0: तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अगर नेशनल लेवल पर वहाँ पर होने वाला है तो किस तरह का वातावरण किस तरह का वाइब्रेशन वहाँ पर होगा।
1: जब मंडे
0: हाँ
1: एट 9 AM
0: हाँ
1: जो आरती करती हूँ और स्थापन करती हूँ 9 AM
0: अच्छा अच्छा
1: अभी तो सर एट 12 PM आरती करती हूँ
0: हाँ
1: एंड मिडनाइट एट 6 PM आरती करती हूँ
0: हाँ
1: एंड ऑन ट्यूसडे तो भजन कीर्तन
0: होता रहता है ओके हम समझते हैं कि सभी लोग जो स्थापना करते हैं वो कुछ लोग तो कल करने वाले हैं स्थापन इस रविवार को लेकिन अधिकतर लोग तो सोमवार को करने वाले हैं तो सोमवार के दिवस काल के 12 बजे सोमवार के सायंकाल के 6 बजे फिर रात के 12 बजे फिर सुबह के
1: 7:30 PM
0: हाँ तो ऐसे मैं समझता हूँ कि हर एक स्थानों में ऐसे ही होने वाले हैं। सो सरोजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने भाग लिया
1: धन्यवाद
0: और जितने भी लोग गुली रिवर में विसर्जन करने जाएंगे हमारी शुभकामनाएं आप तमाम लोगों के साथ ओके
1: गणपति बाबा मोरिया
0: मंगल मूर्ति मोरिया
1: धन्यवाद
0: आपको। सो हमारे जाने का समय आ गया है एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं सबों को गणेश उत्सव के मौके पर।
2: गणराय तेरे बिना में आदि स्तुताय कहां चला।
0: थोड़ी देर में आप मिलेंगे पूनम से बाकी प्रोग्रामों को लेकर पुराने गाने।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: पुराने नगमे। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:12 हो चुके हैं और मैं देरी हूँ साथ, आज आपका पूनम और आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। आज बात उस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसने प्यारी सी स्माइल, अलग फैशन और स्क्रीन पर एक फ्रेश अंदाज में 80s और 90s में बहुत से दिल जीते। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज किसी स्पेशल की, गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी हो या चंकी पांडे के साथ। उनकी फिल्म्स अपना एक अलग ही स्टाइल रखती थी। जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसी ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस की जिनके बाल बहुत सुंदर थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय तक आपने उनका अंदाज़ा लगा लिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नीलम कुठारी की, जिनके खूबसूरत नगमे, जिनकी खूबसूरत फिल्म्स की बातें और दिलचस्प कहते हैं ना जिंदगी के कई ऐसे किस्से जो कि अनसुने तो नहीं कहेंगे, सभी को पता है, पर फिर भी उनकी वो बातें आज फिर से रिफ्रेश करने का दिल कर रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं पुराने नगमों के साथ। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: RM3 रेडियो

0: पुराने नगमे।
1: 5:19 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ। हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस नीलम की। जी हाँ, नीलम ने जन्म लिया हांगकांग में, उनका बचपन भी वहीं बीता। बाद में उनका परिवार बैंकॉक चला गया। बचपन में उन्होंने कीबोर्ड सीखा और जहाँ पे उनको बहुत पसंद था डांस करना। मज़ेदार बात यह है कि बॉलीवुड में आने से पहले उनकी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। मुंबई में बस वो छुट्टियों के दौरान आई और सभी को बहुत पसंद कर रही थी, उन्हें इंडिया बहुत पसंद आ रहा था। वहीं पर थे एक डायरेक्टर जिनका नाम था रमेश बहल, उनकी नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने ऑफ़र की एक प्यारी सी मूवी उनको, जिसका नाम था जवानी। और उनको बहुत ही फ्रेश फेस चाहिए था और फ्रेश फेस उस समय तो नीलम का ही था। और उन्होंने 1984 में इसी फिल्म से उनका एंट्री किया और हिंदी सिनेमा का सफ़र स्टार्ट किया, जहां भी स्टार्ट तो हुआ पर कहते हैं कि आज तक नीलम ने कभी और कहीं रहने का या कहीं भी जाने का नहीं सोचा। उन्होंने कहा, ये बॉलीवुड ही मेरा घर है।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: पाँच बजकर 28 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीलम कठारी की। जी हाँ, नीलम ने तकरीबन 14 फिल्म की गोविंदा के साथ, और अगर नीलम की बात करें और गोविंदा की बात ना हो तो बात बनने वाली नहीं है। उन्होंने मूवी की लव 86, इल्ज़ाम, सिंदूर, खुदा खुदगर्ज, हत्या, दो कैदी, बिल्लो बादशाह और तकदीर वाला, ऐसी जैसी जो फिल्में थी, इनकी जोड़ी इतनी बेहद खूबसूरत और बेहद ही अच्छी लगी, क्योंकि दोनों ही फ्रेश फेस थे और जो भी उनको उस समय देख रहा था उन्होंने कहा कि इनकी जोड़ी तो बहुत ही स्पेशल और ख़ास बनने वाली है। और उसी दौर में गोविंदा का डांस भी एकदम हाई एनर्जी से भरा हुआ था, और साथ में क्यूट सी नीलम जिनका अंदाज एकदम बढ़िया, कहते हैं ना, एक बिल्कुल रोमांटिक दोनों लगते थे, और ऐसा एहसास होता था क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही थी 80s की, उनको सिर्फ ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेसेस पसंद आ रहे थे, और उनकी जो केमिस्ट्री थी दोनों की बहुत ही खूबसूरत थी। तो मैं तो कहती हूँ कि इनके गाने और इनकी जो मूवीज़ थी बहुत ही औसम थी, इसलिए हम चाहे कहते हैं कि नीलम भी बहुत ही खास रही है बॉलीवुड के लिए, तो इसलिए उनका ये स्पेशल सॉन्ग उन्हीं की तरफ से शैलेंद्र और सुदेश वाडकर की आवाज़ में।
2: RM3 Radio.

मस्ती करते तो मेरे का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लुंगी तक का तुमको डिस्को नारियल दिखाएगी। अच्छा बात कर रहा है।

0: पुराने नगमे।
1: 5:43 हो चुके हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म एक्ट्रेस नीलम कोठारी की। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शादी बिजनेसमैन ऋषि सेतिया से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए किन्हीं कारणों से। फिर 2011 में नीलम ने एक्टर समीर सोनी से शादी की, जो कि फिल्म्स में तो इतने नहीं आए बट सीरियल्स में उनका नाम बहुत ही बड़ा रहा। और दोनों ने 2013 में एक प्यारी सी बिटिया अहाना को अडॉप्ट किया। अवार्ड्स की बात करें तो नीलम को फिल्मी करियर में कोई बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड या नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स तो नहीं मिले, बट उनकी ज़िंदगी में 80s और 90s में लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया, जबकि वो बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस रही। और उनकी खास पहचान भी इसी चीज़ से बनी कि वो मतलब अपने दिल से जो भी काम करती, जो भी स्क्रिप्ट लिखती या चुनती कहते हैं, तो वो बहुत ही सोच समझ के चुनती रही हैं। और इसीलिए आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हैं। उनका जो बिजनेस पेरेंट्स का था वो ज्वेलरी बिजनेस से थे और ज्वेलरी डिज़ाइन किया करते थे, तो नीलम ने सोचा कि क्यों ना ऐसा मैं कुछ काम करूं जो मेरे पेरेंट्स का काम हो। अब मुझे फिल्म की ज़िंदगी में इतना तो नाम नहीं मिल सकता एक एज में आके, तो उन्होंने फिल्मी दुनिया को तो नहीं छोड़ा बट हाँ ज्वेलरी फैशन को ज्वाइन जरूर किया।
2: RM3 Radio.

तो दोस्तों नीलम कोठारी के खूबसूरत गानों और उनकी दिलचस्प बातों के साथ आज के पुराने नगमे यहीं तक। 80s और 90s का उनका वो प्यारा अंदाज आज भी याद आता है। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे खूबसूरत शाम और पुराने नगमों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त सिर्फ इसी प्रोग्राम में, उसके बाद आप जुड़ पाएंगे न्यूज़ के साथ में और उसके बाद हम जुड़ेंगे सीधा नई सोच के साथ। इंजॉय कीजिए इस पूरे गाने को।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक शाम के 6 बज रहे हैं। घड़ी मिला ये शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। बुलेटिन में स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कैबिनेट ने शागस मुद्दे पर गुरुवार को अटर्नी जनरल और बरतानी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में चर्चा किए गए विषयों का जायजा लिया। दोनों सरकारों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बातचीत जारी। देश में कई ऐसी जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में कि कब जांच समाप्त हो, ये इंतजार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है। डीपीपी दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य नहीं। देश में दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर गए थे सपने, उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियों दुनिया के अलग कोने में मॉरिशस से एक मंच में जुटे गोपियो इंटरनेशनल कॉन्वेंच 2026 का मंच। विदेश की खबरों में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने किया ड्रोन हमला, उस पाइपलाइन को बंद किया गया।

बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने शक उस मुद्दे पर गुरुवार 10 सितंबर 2026 को अटर्नी जनरल और बरतानी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में चर्चा किए गए विषयों का जायजा लिया। दोनों सरकारों के बीच समझौतों को

0: जुलाई को हुई थी। अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने शाह घुसमुद्दे पर ब्रिटेन के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के ओवरसीज टेरिटरीज एंड पोलॉ डायरेक्टोरेट के निदेशक रोबी बुलॉक के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान बरतानी पक्ष ने एक बार फिर शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस सौंपने के समर्थन में अपनी स्थिति दोहराई। ब्रिटेन ने यह भी पुष्टि की कि अक्टूबर की शुरुआत में एक बरतानी प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस आएगा। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी मॉरिशस की जरूरतों का आकलन करना होगा। यह आकलन उस संधि के तहत मॉरिशस की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया जाएगा जब वो संधि लागू हो जाएगी। दूसरी ओर मॉरिशस मालदीव के दावे पर भी बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रिपरिषद ने 7 सितंबर को नागरिक और मानवाधिकार समूह पेन फॉर राइट्स मालदीवियंस फॉर शागोस द्वारा प्रकाशित एक लेख का जायजा लिया। इस समूह ने मालदीव सरकार से अपील की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का इस्तेमाल शागोस द्वीप समूह पर अपने उस दावे को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने के लिए करे जिसे वो एक ऐतिहासिक क्षेत्रीय दावा बताता है। वो शागोस द्वीप समूह को फुल हवाई के नाम से संदर्भित करता है। मॉरिशस सरकार ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र में शागोस मुद्दे पर मालदीव की ओर से की जाने वाली हर घोषणा राजनयिक संचार या आधिकारिक पहल पर नजर रखेगी। मालदीव की इस पहल के बीच मॉरिशस सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
1: मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रसभा में 9 विधेयक पेश किए जाने पर मंजूरी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल, National Crime Interim Agency Bill, Secretariat of the Independent Advisory Panel Bill, Secretariat of the Independent Advisory Interim Panel Bill, Financial Crime Bill, Asset Recovery and Unexplained Wealth Bill, National Crime Agency Miscellaneous Provisions Bill, or Criminal Justice Offenders Assisting Investigations and Prosecutions Bill. Inka maksad hai National Crime Agency ki sthapna ka pravdhan karna. कैबिनेट ने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में नेशनल एविएशन कंसल्टेटिव काउंसिल की स्थापना को मंजूरी दी। ये परिषद राष्ट्रीय स्तर पर हवाई संपर्क से जुड़ी दिशा तय करेगी और विमानन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों को राष्ट्रीय हित के आधार पर परखेगी। कैबिनेट ने सचिव सागर रामगुलाम की 126वीं जयंती के मौके पर शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इन कार्यक्रमों का मकसद विद्यार्थियों को उनके विचारों, नेतृत्व और देश निर्माण में उनके योगदान के बारे में बेहतर जानकारी देना, देशभक्ति, जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इनके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कला और भाषण प्रतियोगिताएं, विरासत कोनों की स्थापना, संगीत कार्यक्रम, आज़ादी के संघर्ष और देश निर्माण पर चर्चा तथा युवा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को सचिव सागर रामगुलाम के कार्यकाल में लागू की गई मुफ्त शिक्षा के महत्व को भी बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा। कल 11 सितंबर को दिवंगत सतकाम बुलेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिपाही भुइले वाले दिवंगत में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस हस्ती की 106वीं सालगिरह के अवसर पर फूल चढ़ाए गए। उनके बेटे डॉक्टर अरविंद बुलेल सहित लेबर पार्टी के कई सदस्य वहां मौजूद रहे। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। ये इंतजार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है, उनके दर्द को और बढ़ा रहा है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य बात नहीं है। सिरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: किसी अपने को एक दर्दनाक हादसे में खो देना एक ऐसा दर्द है जिसके साथ परिवारों को जीना सीखना पड़ता है, लेकिन जब जांच और अदालती कार्रवाई सालों तक चलती रहती है तो दुख भी अधूरा रह जाता है। कुछ हादसों को 6 साल बीत जाने के बाद भी परिवार आज तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
3: Décédé le 28 décembre 2019. Chaque fois mon renonce avouée, là les renonces
2: 28 दिसंबर 2019 में उनकी मृत्यु हुई। पुलिस कहती है कि जांच अभी जारी है। एक महीना पहले मैं

0: पुलिस स्टेशन गई तो मुझे बताया गया कि बॉम्बू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, वहाँ जाना चाहिए। ये जटिल है क्योंकि हम पहले से ही दुख में हैं, एक सदस्य को खो दिया है। जब किसी जानलेवा हादसे के बाद मामला अदालत तक पहुँचता है और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो कानून में क्या प्रावधान है? असिस्टेंट डीपीपी वकील ओद्रे स्टीफन कहती हैं, हालांकि जब कोई व्यक्ति सच स्वीकार कर लेता है या जिम्मेदार होना स्वीकार कर लेता है, तब अपराध के सभी तत्वों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके। एक व्यक्ति पुलिस जांच के दौरान कुछ बातें स्वीकार कर सकता है, लेकिन अदालत में खुद को निर्दोष बता सकता है। अपराध के सभी सबूत इकट्ठा करने चाहिए। जब कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाती है तब क्या होता है? अगर किसी जानलेवा हादसे में व्यक्ति का रिश्तेदार गवाह है तब वो अदालत को पत्र भेज सकता है, क्योंकि अदालती कार्रवाई तक की अवधि होती है, या फिर अदालत आकर सुनवाई के दौरान शिकायत कर सकता है। डीपीपी दफ्तर की असिस्टेंट डायरेक्टर के अनुसार कानून में इतनी लंबी देरी सामान्य बात नहीं है।
1: Il est vrai que la Constitution prévoit que un accusé, il doit être un inculpé, il doit être jugé dans les plus brefs délais.
0: संविधान में व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन मारे गए व्यक्ति या उसके रिश्तेदार को लेकर कोई कानूनी शर्त नहीं है। मॉरिशस में अब तक ऐसा कोई ढांचा नहीं है कि दुर्घटना होने से लेकर मामले की समाप्ति तक अपने आप उसमें हो रहे विकास को वे देख सके।
1: Du moment où l'accident est arrivé jusqu'à la résolution de l'affaire. Nous n'avons pas de structure comme telle à Maurice jusqu'à présent.
0: इस बीच परिवार अपनी स्थिति समझाते हुए डीपीपी दफ्तर को पत्र लिख सकता है और मदद की मांग कर सकता है। इन परिवारों के लिए मकसद सिर्फ जवाब पाना नहीं बल्कि अपने खोए हुए परिजनों की याद में इंसाफ हासिल करना भी है।
2: कप सचिवान यानी जलवायु पर आधारित सालाना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करीब है। तुर्की में 9 से 20 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी दिशा में पर्यावरण मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठनों के नौजवानों को एकत्र किया। मॉरिशस में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रकोपों और चुनौतियों पर उन्होंने अपने विचार और सिफारिशें पेश की। 12 सितंबर की तारीख मॉरिशस के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण। 6 सदी पहले इस तिथि को सभी मॉरिशनों के बीच देशभक्ति की लहर दौड़ उठी थी जब आकाशीय जहाज के कारण तेल रिसाव हुआ था। रेजिस्टेंस के नाचीव के सदस्य आज मीबर्ग वाटरफ्रंट पर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान सरकारी प्रोग्राम के कई कदमों का कारण बना है। उन्होंने जनता से संवैधानिक सलाह मशवरे में शामिल होने की मांग की और 24 सितंबर को पोटली में आयोजित गतिविधि में भाग लेने की भी उन्होंने मांग की। 2 सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर आए थे कई सपने, कई उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस में एक ही मंच पर एकत्र हुए। अवसर रहा 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का, जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता, उसकी पहचान और भविष्य पर मंथन किया गया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: भारत से मॉरिशस, मलेशिया से दक्षिण अफ्रीका, जापान से कनाडा और म्यांमार से लेकर दुनिया के कई देशों तक, कभी मजबूरी कभी उम्मीद और बेहतर भविष्य की तलाश में निकले भारतीयों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाई और आज उनकी संतानों को जो रहा है गोपियो, एक ऐसा वैश्विक मंच जो भारतीय डायस्पोरा को एक परिवार की तरह करीब लाने का प्रयास कर रहा है।
4: जब जहाज में से लोग अलग अलग देश में उतरत अलन जा तो सबके अंदर से है ये पुकार रहा कि हमने फिर मिलब जा। उस समय सोच जहाज से निकल, जहाज में दोस्ती होल, कठिन स्थिति में जिलन जा और दो जना है जा, एक जना के पता जा तू है जा उतर, तू मॉरिशस में उतर, तू सुदाफिक में उतर, तू फिजी में उतर, तू हब जा उतर, तो कितना कठिन दायक स्थिति हुई उस समय और हाउ समय दिल से कौन चित्कार निकलल हुई अपन के समझाई खातिर, चिंता नहीं कर हम फिर मिलेंगे।

0: मिलब जा और हवे फिर मिलब के हमने के 2 साल लगभग लगल हाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाई के
1: युवाओं को जोड़ना, व्यापार और पेशेवर अवसरों को बढ़ाना, नेटवर्किंग को मजबूत करना और भारतीय संस्कृति एवं भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सम्मेलन के मुख्य मुद्दों में शामिल है।
2: लगभग 3.5 मिलियन जो प्रवासी भारतीय हैं वो दुनिया में रहते हैं और गोपीय उसका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको जोड़ता है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको भारत सरकार के समक्ष रखता है। तो ये कन्वेंशन हर 2 साल में एक बार होती है और तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि इन कन्वेंशन में जाएं और हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है वो सम्मिलित होके आप डिस्कस करें और उसके बाद अगर आप उसका फिर भारत सरकार के साथ बात करें और उनका सॉल्यूशन निकालें।
3: बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग प्लस क्रिप्टो बैंकिंग के को प्रमोट कर रहा हूँ जिसके कारण से ये जो बैंकिंग प्रॉब्लम है जो फंड जो है कहीं कहीं पे काफ़ी टाइम से पहुँचते हैं, अभी बहुत सारा सेंक्शन लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही फ़ंड ट्रांसफ़र और उसके कारण से बिजनेसमैन को हो रहे लॉसेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर टाइमिंग एंड ऑल, सो वी आर ट्राइंग टू डू इट शॉर्ट।
1: मुख्य मेहमान मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रवासन यानी माइग्रेशन को आज की वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच सिर्फ साथ रहने के बजाय एक्टिव डायलॉग इंटरकल्चरलिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
4: मॉरिशस इज नॉट इम्यून टू दिस वाइडर करेंट्स येट माइग्रेशन इज आल्सो डीपली एम्बेडेड इन आवर ओन नेशनल एक्सपीरियंस। इट इज अ वेरी स्टोरी थ्रू विच मॉरिशस बिकेम द कंट्री इट इज टुडे। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयरफॉर not simply to manage diversity or ensure peaceful coexistence, but to cultivate the conditions for genuine interaction, dialogue and a stronger sense of belonging to a common society.
1: रविवार 13 सितंबर को ये वैश्विक सम्मेलन समाप्त हो रहा है, गोपी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026, जहां विरासत जुड़ रही है, समुदाय एकजुट हो रहा है और भारतीय डायस्पोरा अपने भविष्य की नई कहानी लिख रहा है। मॉरिशस में 11 से 13 सितंबर 2026 के बीच 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का आयोजन किया जा रहा है और उद्घाटन समारोह के दौरान कई देशों से आए प्रतिनिधि इस समय भाग ले चुके हैं। इस सम्मेलन ये जो सम्मेलन है दुनिया भर में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय यानी कि इंडियन डायस्पोरा के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को एकजुट करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसी उद्देश्य से इसका आयोजन भी किया गया है। सम्मेलन का मुख्य ध्यान युवाओं और प्रवासी समुदाय के भीतर व्यवसाय एवं व्यापार को बढ़ावा देने पर आधारित विभिन्न विषयों और सत्रों पर आधारित रहेगा।
5: हाईलैंड्स के हॉनोरिस एजुकेशनल नेटवर्क में 11 से 13 सितंबर के बीच इस्लामिक सिविलाइजेशन पर आधारित 5वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस लगा। आज अलग अलग साझेदारी की मकसद के लिए एकत्र हो रहे हैं अफ्रीकी इलाके और हिंद महासागर के टापू देशों में इस्लामिक रीति रिवाज को बढ़ावा देना और साथ में इसके संरक्षण और इसके प्रचार प्रसार पर भी विचार करना। मॉरिशस भारत और तमिल समुदाय के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को आर्थिक सहयोग का एक सशक्त माध्यम बनाना ये 13वें वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक समिट के प्रमुख देशों में से एक है। इस वार्षिक सम्मेलन में कई देशों से आए ठेकेदार, निवेशक, पेशेवर और अधिकारीगण भाग ले रहे हैं। कल रात इस्लामी सकाफती सेंटर पोटली में कौमी खैरात मुकाबले का फाइनल लगा। 17 साल की उम्र वाले मोहम्मद हमीद रजा खान जुमन ने पहला इनाम जीता। मकतुल मुकरम सोसाइटी ने एमबीसी के ताउन से इस मुकाबले का एहतमान किया। मकसद नई नस्ल में कुरान की तिलावत को फरोख देना। कुरान इस्लाम की सबसे अजीम किताब है जिससे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर नाजिल फरमाया गया था। आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सवम का शुभारंभ हो रहा है। ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ।

0: रिपोर्ट में।
1: पूजा विधि, मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ तेलुगु समुदाय के श्रद्धालुओं ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए 40 दिनों की व्रत दीक्षा का संकल्प लिया। इस अवधि के दौरान भक्तजन उपवास एवं विभिन्न धार्मिक नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी की भक्ति और आराधना में शामिल होंगे।
2: इस अवधि के दौरान हमें अनुशासन में रहना चाहिए और हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, यानी काम, क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें स्वयं को भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये माध्यम है उनके कमल चरणों के और समीप जाने का। इन 40 दिनों के दौरान तेलुगु महासभा की पहल पर कई विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सभा के अध्यक्ष के अनुसार इस व्रत दीक्षा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना तथा मर्शन समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है। हम शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी पूजा के साथ कल तेलुगु महासभा में करेंगे। पूजा शाम 5 बजे से शुरू होगी। हम चाहते हैं कि ये महोत्सव समस्त मॉरिशन समाज एक साथ मिलकर मनाए। इन 40 दिनों के व्रत के दौरान 7 अक्टूबर को युवा शाखा द्वारा वाल्डेवी में स्पिरिचुअल कंसर्ट लगेगा और 11 अक्टूबर को महिला संगम द्वारा बटुकम्मा का आयोजन होगा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा।

0: भारत के महाराष्ट्र राज्य से मॉरिशस तक मराठी संस्कृति का प्रचार नेत्र के माध्यम से भी हुआ। गांवों और मछुआरों के बीच या फिर खेतीहरों द्वारा की देशज कई देशज नृत्य किए गए जो एक अलग कहानी सुनाते हैं, एक अलग रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ साथ अब ये नृत्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी किए जाने लगे हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: हर एक नृत्य की अपनी एक कहानी होती है, एक समुदाय की, उसके काम की और उसकी मान्यताओं की कहानी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक नृत्यों में कोली नृत्य का एक विशेष स्थान है। ये नृत्य मुख्य रूप से कोली मछुआरा समुदाय से जुड़ा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। इसके हाव भाव समुद्र में मछुआरों के जीवन को दर्शाते हैं। लहरों की गति, मछुआरों का काम और उनकी नावों की गतिविधियों को इन नृत्य मुद्राओं के माध्यम से दिखाया जाता है। मछुआरे इन मूवमेंट्स के माध्यम से सुरक्षा की मांग करते हैं। एक अन्य परंपरा, एक अलग दुनिया, किसानों की दुनिया। महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य कृषि उत्सवों और अच्छी फसल के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जब नाचते हैं तो ज्यादातर हाथों का प्रयोग किया जाता है और किसान प्रार्थना करते हैं कि फसल अच्छी हो। लेकिन ये अलग अलग परंपराएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्यों के ताल और नृत्य हाव भाव एक ही प्रस्तुति में देखने को मिलते हैं।
2: डांस की एसोसिएशन अवेक गणेश चतुर्थी से झाकरी।
1: गणेश चतुर्थी की बात जब करते हैं तो झाकरी की बात होती है। झाकरी भी एक फोक डांस है। समय के साथ झाकरी में बदलाव लाए गए, इसकी प्रस्तुति में विशेषकर। मराठी समुदाय के प्रति

0: प्रतिनिधि झाकरी को यूनेस्को के सामने ले जाना चाहती हैं, एक इनटैंजिबल हेरिटेज के स्तर पर। ये नृत्य सिर्फ अलग अलग कदमों का मेल नहीं है, ये मराठी संस्कृति, इसके इतिहास और उसकी पहचान की अभिव्यक्ति है।
1: विदेश में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है, जिसके बाद उसे बंद करवा दिया गया। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है। और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा, दक्षिण में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह 6:08 पर सूरज निकलेगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

Çok samaçal sinye. La Sujin l'escalier me, La Sujin l'escalier me, 64 साल के 64 years old के जनाब मोहम्मद इकबाल नसरुला, जनाब मोहम्मद इकबाल नसरुला, जो इकबाल मेकानिसिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं. उनका जनाजा आज रात 8:30 बजे, उनके मकान La Sujin l'escalier से उठाकर दफनाने के लिए La Sujin l'escalier का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM. सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप में, 56 साल के 56 years old के श्री जितेंद्र गोपी, जो गोपी क्वाफर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM. लुइस स्ट्रीट रॉयल रोड ले ओशेते रूज में, पैंतालीस साल की 45 years old की श्रीमती प्रविता केतु, पैदाशी नाम जगू और जो फी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान लुइस स्ट्रीट रॉयल रोड लोशत अरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिद फत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM. नंबर 5 रोजलिन लेन कासिमे, 60 साल के 60 years old के श्री मानाजी आबाजी, जो दादो कैकायरी अपला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान नंबर 5 रोजलिन लेन कासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन पोर्टलवी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM. अटलास लेन गुडलैंड्स में,

0: 60 साल के 60 years old के श्री जगदीप लखवा जो देवानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनकी पत्नी निशा लखवा के मकान अटलास रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोचे की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। रामचंद्र रोड रिश्मा सेंट्रल फ्लैक में तिरासी साल के 83 years old के श्री गोइनसामी चिलम्बन जो तंगावेल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और कॉन्स्टांस शुगर स्टेट के पूर्व ड्राइवर थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान रामचंद्र रोड रिश्मा सेंट्रल फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। पाई रोड पाई में 58 साल के 58 years old के श्री राजेंद्र नाथ अकू जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और दागोचिया रहा करते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके रिश्तेदार विनय गणपत के मकान पाई रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। नंबर 12 रोथ रॉयल कासी में 58 साल की 58 years old की श्रीमती माधवी लाचा की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी मां कुशीला लाचा के मकान नंबर 12 रॉ रोड कासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालीन पोटली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बुआशहरी रोड मोका में 88 साल के 88 years old के श्री प्रेमदत्त गुलाम जो बालों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी अनीता गुलाम के मकान बुआशहरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। कथबो रोड बोनाकई में 57 साल के 57 years old के श्री चित्रंजन माधो जो राजू मौशां रोची के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान कथबो रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि दे जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रुद बुआशहरी मोका में 65 साल की 65 years old की श्रीमती भामा रामचंद जोफी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके भाई अशोक रामचंद के मकान रुदबुआशहरी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: Nay so, nay so, nay so, nay so.

0: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जुड़े हैं आपके ही शो नई सोच के साथ। मैं हूं आपके साथ इस समय पूनम। आज ऑफिस की एक छोटी सी बात, क्या कम बोलने वाला इंसान कमजोर होता है? क्या हर डिस्कशन में अपनी आवाज ऊंची करना, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर पर हो, जब दो लोग बात कर रहे हैं या चार लोग बात कर रहे हैं, तो क्या आवाज ऊंची करने वाला जो इंसान है, क्या उसको बड़ा कहा जाता है? क्या ये बात जरूरी है कि बात ऊंची ही की जाए? कई लोग शांत रहते हैं, पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी बात को रखते हैं। तो आज बात करते हैं शांत रहने की इस खूबसूरत ताकत पर। इंजॉय कीजिए गानों को और साथ में इस प्रोग्राम नई सोच को, जहाँ पे हम ये सब आप लोग जानते ही हैं, पर हम फिर से आपको सिर्फ बताते इसीलिए जिससे कि आपको जो चीज़ें भूल गई हैं वो धीरे धीरे करके वापस याद आ जाए।
1: RM3 Radio.

0: 6:44 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। अपने ऑफिस में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे, मीटिंग चल रही होती है, सब अपनी अपनी बात रख रहे होते हैं और कोई एक इंसान चुपचाप सब सुन रहा होता है। हमें लगता है शायद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन हो सकता है वो पहले पूरी बात समझ रहा हो और जब बोले तो ऐसे बात कहें जो सच में काम आए। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो जिनका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है और वो वहाँ पर चुप हो जाते हैं, और वहाँ पर सच में चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको बॉसेस जो भी आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो मीटिंग फिक्स करी है, उनको बोलने दीजिए। उसके बाद उस बात को एनालाइज कीजिए, उस बात को सोचिए समझिए कि क्या आपका बोलने से उनकी बात में कोई कमी तो नहीं हो जाएगी, उनकी बात गलत तो नहीं हो जाएगी, क्या वो जो मीटिंग कर रहे हैं वो किसी और रास्ते में या ट्रैक में या डिस्कशन में या किसी आर्ग्यूमेंट में तो नहीं चली जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है जब बड़ों को सुनो और उसके बाद बोलो।
1: RM3 रेडियो।

0: नई सोच। दोस्तों आप जुड़े हैं नई सोच कार्यक्रम के साथ में और मैं इस समय साथ दे रही हूँ आपके पूनम। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि क्या बहुत तेज बात करने से ऑफिस हो या घर में आपकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाएगी या नहीं। शांत रहने का मतलब ये भी नहीं कि आप एक गलत बात को चुपचाप मान लें। अगर कोई बात सही नहीं लग रही अगर ऑफिस में और आपको लग रहा है कि ऑफिस में जो भी कई बात कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ये ज़रूर बीच में बात कहने की ज़रूरत है कि ये बात गलत है, पर बिना गुस्से के, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना अपनी भी आवाज़ तेज़ किए हुए एग्जैक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट उनको बताना है कि आपकी जो डायरेक्शन है गलत रास्ते पे जा रही है। और जब कहते हैं ना कि जब गलत रास्ता पकड़ लिया जाता है तो जो उसका एंड होता है मीटिंग का वो बहुत ही गलत होता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ तेज़ आवाज़ में नहीं, साफ और सही बात कहने में भी दिखाई देना चाहिए। अगर आपको सही बात कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आप खुद गलत बोल रहे हैं तो वहीं पर ही रुक जाएं।
1: RM3 Radio.

0: 6:53
1: हो चुके हैं और नई सोच सिर्फ आपको इतना कहती है कि नया सोचो, कुछ अलग सोचो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ प्यारा सोचो, खुद के लिए सोचो, अपने दोस्तों के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो। अब हम बात कर रहे थे कि अगर ऑफिस में कोई आपको प्रवोक कर दे या किसी बात पर बहस बढ़ने लगे तो तुरंत जवाब देना सही है या गलत है। तो आपको क्या करना है, तुरंत जवाब देना नहीं है, थोड़ी देर रुक कर सोचिए क्या इस बात पर आपकी एनर्जी खर्च करना ज़रूरी भी है या नहीं है। कई बार इंसान को सिर्फ ऐसे ही दिल करता है कि किसी की भी आर्गुमेंट दो लोगों की किसी और अनजान की हो रही होती है और बीच में वो खुद से आ जाते हैं और जो आपने खाया होता है वो भी एनर्जी निकल जाती है और जो आपको लगता है कि आपने इतने टाइम तक उस सिचुएशन को संभाला हुआ था और उस ऑफिस के अंदर अपने आप में अपने आप से जुड़े हुए थे, अपने लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, वहाँ पर आपने बोल कर बात गलत कर दी। जहाँ आपको बात छोड़ देनी चाहिए वहाँ छोड़ देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको जितनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी उनके लिए है जिनको एहसास नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। नई सोच सिर्फ आपको इतना ही कहती है कि साथ बने रहो, अपने साथ बने रहो।
2: RM3 Radio.

अपना याद रखिए, शांत रहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो अपनी बात ज़रूर रखिए। इसी छोटी सी नई सोच के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, पर मैं आपके साथ हूँ। अगला प्रोग्राम होगा दिलों की आवाज़, हम एक घंटा रहेंगे टिकटॉक में और उसके साथ बनेंगे, उसके बाद एक घंटा आपके साथ चलेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली आपके फ़ोन और मैसेजेस भी लेंगे। तो इन्जॉय कीजिए अपने गानों को।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ, जहाँ पे आवाज़ सच में दिल से ही आती है और एहसास होता है कि कितना हम लोग यहाँ पर मॉरिशस में कितनी खूबसूरती से चाहे कोई भी त्यौहार हो अपने दिल से मनाते हैं। और जब दिल से मनाते हैं तो हम यहाँ पे थोड़े बहुत डांस भी करते रहते हैं। तो इस समय हम जुड़े हुए हैं आप सभी के साथ में टिकटॉक के साथ में 1 आवर, और उसके बाद 1 घंटा हम जुड़ेंगे आपके मैसेजेस और आपके जो बहुत सारे कॉल्स आते हैं उसके साथ में। पर आपको इतना ही बोलेंगे, जो शाम है ना ये बहुत ही सुहानी है, यहाँ पर पुराने गाने भी चलेंगे, यहाँ पे नए गाने भी चलेंगे, यहाँ पे दिल की हर वो बात होगी जो कहते हैं ना बहुत ही एक्सेप्शनल होती है और वो सीधा हम लोग तक पहुँच ही जाती है सभी मैसेजेस के साथ में। तो अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250620 पर, और कॉल लेंगे हम 1 घंटे के बाद 4028070 पर। हम आपको इतना ही बोलते हैं, गणपति बप्पा
2: Moria. RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: ये साहब ने मुझे रिहर्सल के लिए बोला, मैं आता हूँ। जब उन्होंने गाने की रिहर्सल दी तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला, बाप रे, ये कैसे होगा अब मुझसे, क्योंकि उस चीज़ की आदत ही नहीं थी हमको। उन्होंने कहा, रिहर्सल की जगह नहीं होता तो बदल देता हूँ। उन्होंने कहा बदल देता हूँ, और मेरे एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि बदल देना ये हमारे स्वभाव में नहीं है कि कोई कहे कि आप गाइए और हम गा नहीं सकते हैं तो हम प्लेबैक सिंगर कहे के। मैंने कहा, नहीं, मैं गाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं 15 दिन रिहर्सल करूंगी। और मैं वो गाना गाने के लिए गई, और वाकई उस गाने के बाद मुझे 100 का नोट हाथ पे रख के RD बर्मन साहब ने कहा कि वाह, क्या गाया आपने।

0: दिलों की आवाज।
1: देखिए आजा ये गाना जो है ना सबको सच में बुला के ले ही आता है, और हम तो यही कहते हैं हमारे पास बैठे रहो और कहीं मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कई बहुत सारे हमारे दोस्तों इस टाइम ड्राइव कर रहे होंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई शॉपिंग के लिए गया होगा, और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ वहाँ गूंज रही होगी जहाँ पर कोई डिनर चल रहा होगा, या कोई रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो आवाज़ पहुँचनी होती है। तो RM3 हमेशा आपके साथ रहता है 24 आवर्स, हमारे सभी आर्जेस आपको खुश करते हैं, बस इसीलिए कि आपका जो सैटरडे है, संडे है, या पूरा वीक है बहुत अच्छा जाए। तो हम तो सभी को कहते हैं कि आपका वीक अच्छा जाए, आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी सी रहे। तो साथ में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके भी नाम ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़ी हुई हैं हेमा श्रेष्ठा, सिमी ललित जी साथ दे रहे हैं USA से, हेमा और रीता देवी, वेदना मृणाल अपनी मम्मी पापा के लिए जिनका नाम है देवरानी इस समय हमें सुन रही हैं, और MT बापू, नुकीब, राजी, GK कोटीवाड़ा, संजय के, माधुरी जी, बबलू जो और पूछ रहे हैं कि आपके मॉरिशस में यहाँ पर कौन से दिन गणेश चतुर्थी है। तो हम आप सभी को बता दें यहाँ पर मॉरिशस में 15 सितंबर को गणेश चतुर्थी होगी। और लीना जी के पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, तो आपको शाम की बहुत बहुत थैंक यू, और हम आपको इतना ही कहेंगे कि जो शाम आती है ना बच्चों के साथ हो तो और अच्छा लगता है, और साथ में खुद के साथ हस्बैंड वाइफ बैठे हों, थोड़ी सी गप्पे शप्पे हों, थोड़ी सी चाय हो, थोड़ा सा खाना हो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। इस समय अक्की जी साथ दे रहे हैं, अक्की जी आपको याद करके अक्षय कुमार की याद आती है। दिनेश गोपी जी साथ दे रहे हैं, राधा संतोष हॉलैंड से एंड मलेशिया से हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। इन्जॉय कीजिए गानों को। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: दिलों की आवाज दिलों की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ में आप जुड़े हुए हैं। पर आपको इतना बताएं कि यहाँ पर जो हमारी मस्ती हो रही है टिकटॉक पे, आप सोच नहीं सकते। सब लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, एक तो गणेश चतुर्थी आ रही है, साथ में सारे मस्ती कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई गाना चलाना है, किसी को कोई गाना सुनना है, और कई बार अपने पेरेंट्स के लिए कोई सुनना चाहता है, और कई बार कहते हैं कि चलो हमारे लिए ही चला दो। पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बस चुपचाप हमें यहाँ पर बैठे बैठे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या घर पर होंगे

तो हम तो आपको इतना ही कहेंगे, थोड़ा सा अगर आपने कुछ खाना वाना खा लिया है, अगर नहीं खाया तो पहले खा लीजिए, पर उसके बाद अगर थोड़ा सा ग्रीन टी लें तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, सभी के लिए। ग्रीन टी ले सकते हैं आप, ब्लैक टी ले सकते हैं, कॉफ़ी नहीं लीजिएगा। और ये आपके एक तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और साथ में आपको थोड़ी सी कहते हैं ना कि सुस्ती नहीं आने देता, पर एनर्जी भी नहीं आने देता, बस एकदम आपके पेट को थोड़ा सा नरम रखता है, जिससे कि आप थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए बहुत रिलैक्स हो सके। तो देखिए जी, हमारे साथ इस समय बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ कुणाल जी हैं और एक बड़ा सा प्यारा सा मैसेज किया, हे प्रभु। तो बस ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने हे प्रभु लिखा क्यों था। चलिए, सलीम गुलाब जी साथ दे रहे हैं, बीबी जी साथ दे रही हैं, रिया, वीना, गीता, राजीव जी साथ दे रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक हम पढ़ भी नहीं पा रहे, पर एक के बाद स्क्रॉल होता जा रहा है। तो हम आपको यही बोलेंगे, सभी आप सबके पसंद के गाने यहाँ पर चल रहे हैं, पर आप थोड़ा सा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिकटॉक के साथ जुड़े हैं तो टिकटॉक के साथ रहें, पर अगर आप घर पर सुन रहे हैं तो हम सच में आपको सभी का स्वागत करते हैं और सबको इतना ही कहते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा हंसिए। अगर अपने पास कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बैठा है, उनको अपने पुराने दिन की याद दिलाइए। जब आप याद दिलाएंगे तो उन्हें भी एहसास होगा हमारे को पास बहुत सारी कहानियां हैं। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: देखिए कैसे होता है जिंदगी में, कभी कभी ऐसे लोग ऐसे अचानक से मिल जाते हैं और रास्ते में बस रास्ता समझ नहीं आता कि कहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर हम जाएंगे। इस समय हमारे साथ एक ऐसे लिसनर है जिनका नाम है रोशनी और उनके बॉयफ्रेंड का नाम है रोशन, और वो कह रहे हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, एक कहते हैं वेडिंग में, एक शादी पर गए थे और वहाँ देखा और बस हमारा दिल एक दूसरे पर आ गया और हम तभी से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम शादी का प्लान कर रहे हैं। पर ये कह रहे कि हमने जो नाम हम दोनों के एक जैसे थे ना, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये जो टाइम है और ये जो रिलेशनशिप है ये आगे इसीलिए बढ़ सकता है क्योंकि हमारे नाम एक जैसे हैं। और बस इतना ही कह रहे हैं कि हमने कई बार एक दूसरे को देखा, देखते रहे कई बार ढूंढते रहे पर हमें मिल ही नहीं पाते थे। तो ऐसे अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है, इंसान है जिसका मैसेज आता है तो आपका दिल धड़क जाता है, किसी की आवाज़ सुनते हो तो एहसास होता है भाग के फ़ोन उठा लें, तो ये जो नया नया प्यार होता है ना इसकी बात ही कुछ अलग होती है। और अगर आपको भी हुआ है तो ये गाना आप सभी के लिए बहुत ही पसंद आएगा। और एक और वीना

0: जी और आकाश की शादी है तो उनके लिए भी एक प्यारा सा गाना हम चलाने जा रहे हैं, पर हम इतना ही कहेंगे आपको कि अगर आप जुड़े हुए हमारे साथ तो थोड़ी देर और जुड़ जाइए, जुड़े रहिए। यहाँ पर हम टिकटॉक में अभी लाइव हैं और उसके बाद हम आप सबके कॉल्स भी लेंगे और मैसेजेस भी लेंगे। साथ में आपको यही कहेंगे जो महफिल है हमने आपके लिए सजाई हुई है और इधर आपका आना ज़रूर बनता है, तो ये गाना आप सभी के लिए जिनको भी किसी खास इंसान से प्यार है, और ख़ास इंसान वही हो सकता है जो आपके दिल में तो हो और साथ में आपकी आंखों में भी कहीं ना कहीं चमकता हो।
1: RM3 रेडियो।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: 8:12 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ RM3 पर और इस समय सात देरी है पूनम और गणेश चतुर्थी आने वाली है और घरों में तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो रखी हैं। कहीं पर क्लीनिंग चल रही होगी, कहीं पर सब्जियां काटी जा रही होंगी और कहीं बहुत सारे जने गणेश को कहते हैं ना खुश करने के लिए हमारा बच्चा पार्टी सारे तैयारियों में लगे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ये तैयारी चलती है और हम तो यही बोलते हैं आप सभी को कि बहुत अच्छी बात है, जो भी भक्ति वाला काम है आप ज़रूर कीजिए, पर एक दूसरे का ध्यान रखिए। RM3 हमेशा आपके साथ है। बस ये जो टाइम है ना, इस टाइम कुछ ऐसे गाने चलाने दिल कर रहा है जो कि मतलब खुशी वाले हों, खुश जो माहौल है बहुत ही प्यारा और खुशनुमा बन जाए। अगर आपको कोई कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028070 पर, और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है किसी अपने के लिए तो आप मैसेज कर सकते हैं 5250620000 पर, क्योंकि अभी इस समय हमने टिकटॉक से बाहर आ गए हैं और आपके साथ जुड़ गए हैं। एंजॉय कीजिए गानों को और साथ रहिए हमारे RM3 रेडियो मनोरंजन पर।
0: RM3 रेडियो

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: 8:22 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और इस समय जो टाइम है ना, थोड़ा सा अंधेरा तो हो ही गया और घर में सारे काम भी निपट चुके होंगे बहुत घरों में, बट हाँ, हो सकता है गणेश चतुर्थी की तैयारी सब कर रहे हों, बट जो नहीं कर रहे या जो घर में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ हमें सुन रहे हैं इस समय, हम उनको यही कहेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। पर थोड़ा सा थोड़ी सी हल्की सी अगर घर में ही वॉक कर सकते हैं 5-10 मिनट, जैसे अभी हमारे धानी सर वॉक कर रहे थे और साथ साथ कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई मुझे एक गाना सुनना है, और मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी तबीयत ठीक है ना, आपकी सांस फूल रही है, क्या हो गया? तो कह रहे नहीं, मैं वॉक कर रहा हूँ। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि मतलब ये मैसेज सभी को जाना चाहिए कि आप वॉक करते रहिए, थोड़ा सा ग्रीन टी ले लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें, चाय ले सकते हैं हल्की सी, बस कॉफ़ी को छोड़ के तो कॉफ़ी अच्छी होती है, बट मॉर्निंग के लिए अच्छी है, पर रात के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि नींद नहीं आती, एनर्जी मिल जाती है। पर इसके साथ में हम आपके मैसेजेस भी साथ साथ ले लेते हैं। दिव्यानी जी फ्लाग से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाग से साथ दे रही हैं। वेनिसन एंड अमृता जी साथ दे रहे हैं, और सुदेवी जी साथ दे रही हैं, और अपने सभी परिवार के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश के साथ में गणेश चतुर्थी की सभी को विशेष भी दे रही हैं। साथ में फुलवंती जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। साथ में धानी सर हैं, जो उनके दो नाती हैं हिमेश एंड यश, उनको कह रहे हैं

0: कि तुम मेरी जान हो, क्या करें, जानों के बिना तो भाई गुजारा नहीं हो सकता, और जो नाती पोते होते हैं उनके बिना तो सच में ही कुछ अच्छा नहीं लगता। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका भी वही हाल होता है जो हम सबका होता है, लेडीज़ का भी यही हाल होता है, कहाँ और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इस समय रिहाना साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, और साथ में एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, और साथ में हमारे दोस्त इब्राहिम सर साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। मैं आप सभी को बोल रही हूँ, चाहे आपका कॉल आए ना आए, चाहे आप मैसेज करें ना करें, पर हमारा दिल हमेशा आपकी तरफ ही होता है, और हम इतना ही कहते हैं, साथ रहें, इन्जॉय कीजिए गानों को, और अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा 5250-6200 पर। इन्जॉय करें इस सॉन्ग को।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 8:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम के साथ में और इस समय हम उनके साथ बात करना चाह रहे हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है। हो सकता है 2 महीने हो, 3 महीने हो या 1 साल हुआ हो। हम उनसे पूछना चाहते हैं कैसे चल रही है भाई ज़िंदगी, आपके वीकेंड्स कैसे जा रहे हैं। छोटी मोटी अगर कोई तकरार हो जाए तो उसको भी एक ब्लेसिंग समझिएगा, क्योंकि ये शुरुआत में सब कुछ होता है और इसी चीज़ों के साथ में तो आपका एक रिश्ता बनता है। और जिनके बीच में बिल्कुल कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मैं तो कहती हूँ आप बहुत लकी हैं, हमेशा ऐसे खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आपके मम्मी पापा या सभी एक दूसरे की को ताकते रहते हैं कि हमारे बच्चों की खुशियां कब साथ साथ चलें। तो हम तो इतना ही बोलेंगे, किसी भी तरह की कोई भी दुख कोई टेंशन अपनी ज़िंदगी में मत लीजिएगा और स्पेशली रात को तो उस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। सब मॉर्निंग में सब ठीक हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, पर आपको जब आप आराम से सोते हैं रेस्ट करते हैं तो आपका ब्रेन भी आपको बहुत अच्छे से सिग्नल्स देता है और आपको चीज़ें समझाता है कि आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और ये सबके साथ होता है, अब पेन डाउन्स लाइफ में आएंगे और आते रहेंगे, कभी नहीं जा सकते। तो ये ज़िंदगी प्यारी है, इसको दिलों के साथ जीजिए, अपने लोगों के बीच में रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये गाना एक उसके लिए है जो स्पेशली बहुत ही प्यार में डूबे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत लीजिएगा पर ये गाना ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं बट कुछ कारणों की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये गाना आपके लिए, हम यही बोले ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि आप जल्दी जल्दी एक साथ हो सके और मिल जाएं।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ में, और यहाँ पर मैं हूँ आपका साथ दे रही पूनम। और आप सबके जो मैसेजेस आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं, आप भी अपना साथ पूरा निभा रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करूँगी कि जो वो गाने हैं आपकी पसंद के चले होंगे, आपका दिल खुश हुआ होगा। कई बार ऐसे होता है कि हमें लिरिक्स याद नहीं होते हैं, मतलब हमें उनके जो वर्ड्स होते हैं याद नहीं होते हैं, पर हमें हमारा वो गाना बहुत फेवरेट होता है, पर फिर भी हम चाहे कितना ही बदसुरा गाते हों, अपना फुल कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और वो गा ही लेते हैं। पर मैं आपको यही बोलूंगी, वो गाना आपका बस फेवरेट होना चाहिए और दिल से जुड़ा होना चाहिए। चाहे आप कैसा भी गाएं, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि दिल गा रहा है ना। तो हम तो ये प्रोग्राम भी यही है कि दिलों की आवाज़, तो जब दिल की आवाज़ आई जाती है तो फिर क्या गाना और क्या ना गाना। तो बस गाइए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए। इस समय जो ये गाने की फरमाइश की जा रही है वो छोटी जी साथ दे रही हैं, आत्माराम भाई, हरीश भाई और ललिता जी के लिए ये गाना सुनाना चाहती हैं। साथ में मालिनी जी साथ दे रही हैं, डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा, अपादू फैमिली के लिए, और सभी उन सभी लिसनर्स को हम थैंक यू बोलेंगे जो हमारे इस समय साथ दिया, चाहे टिकटॉक पे साथ दे रहे थे, चाहे RM3 पे डायरेक्टली रेडियो से जुड़े हुए थे। बस आपको इतना ही कहेंगे, गुड नाइट एवरीवन, गणेश चतुर्थी की आप सबको बधाई हो, और जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे से कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा इस स्पेशल प्रोग्राम को। और जो ये गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम आने वाला है, तो जो भी ड्रेस चूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट से बनिएगा, ब्यूटीफुल बनिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, इन्जॉय कीजिए ये गाने को। दोनों गाने जो हैं मेरी पसंद के हैं आप सबके लिए।
0: RM3 Radio.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा और 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और 10 दरजात बुलंद किए जाएंगे। बहवाला निसाई शरीफ। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का
3: आज की रात रत्ना के संगे एमबी

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर हो गलबा समय भोजपुरी गीत संगे जुड़े के अभी से लेके रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सब कोई के साथ है देवता वन रत्ना सप्रेम नमस्कार स्वीकार कर लजा और मजेदार कार्यक्रम संगे आप सब कोई हमनी के संगे जुड़े सकब 4028085 पर अपन पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकबा और इमे सास विदा करे खोजा था वह 5251705 तो चलो 9:10 हो गल बा और इस समय हो गल बा बढ़िया भोजपुरी संगीत के साथ जुड़े के चलो शुरू करब जा आज के है पहला गीत संगे 2025 के बरिस के है गीत है किशोर खिमिया के आवाज में रखल जलसा लाली लाल बा

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और जितना कोई अभी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर सब तैयारी में लगल हवन सा बस तोरा बहुत बहुत शुभकामना देव जा। और 9:17 हो गल बात है चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिर आज के जुन पहला फरमाइश हमनी के हिया मिलल बा सुनीता जी के पसंद पर पसंद पर चलाओ अब जा है अगला गीत धोती पोथी पगड़ी और है गीत उनकर जो बहिन है जे कोंगो मा रहेलन विमला जी उनकरा है गीत बहुत खुशी रहेलन सुने के विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन उनकर बहिन हवन वीना संगे हवन अमृता जे साथ है देवत हवन गोंगोब से और गुडलैंड से और ये विमला जी के बेटा संजीव कनाडा से आल हवन चला बहुत खुशी हवन चला निमन से बिताया है छुट्टी के दिन और खुशियाली के साथ धोती पोथी पगड़ी है गीत तोहर खातिन करब जा और जितना कोई सुनत हवन बस साथ देते रहिया जा और मजेदार गीत संगे है जा पर हमनी के चाचा है ना अभी का जानी जान जान गल हवन पोता पे कैसे कोमान पासे करे के ऑनलाइन शॉपिंग करे के शुरू कर दे लखवा अब आदमी बोलले बा ओकरा कि 10 दिन लगी एगो जोली कुर्ता किनले हवन पर अभी ले कुर्ता पहुंचले नहीं बा त जाने ल चाचा त लगल खीस करे पुनारिये के टेलीफोन उठा के लगल झगड़ा करे वो आदमी संगे बोले हाँ ऑनलाइन के दुकान खोल के बैठ गल हवा लेकिन हमने के जन चीज हा हम बोला था तोरा हाई कुर्ता हम पहने खोजा था गणेश चतुर्थी के और गणेश चतुर्थी त 2 दिन में बा मिली हमनी के हमर कुर्ता ऑर्डर कर ले हाई तो काहे नहीं दे लावा था हमनी के तो जोन छोकरा रहल वो बोले चाचा जी काहे दिन इतना खिसियात हुआ तनी नम्रता के संगे बात करब बोले हाँ दा ओकर संगे बात करब बोले नहीं नहीं हमर मत बल रहल तनी शांति से बतियाइए बोले हाँ दोनों से बतिया ले अब नम्रता से भी बतिया ले अब शांति से भी बतिया ले अब सलब हमनी के पहला हमर कुर्ता दिया

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा और ही चला है जा पर विश्वानी दुमन हमनी के संगे जुड़कर हवन वाकुआ बगल से और हौजा पर से सोना नोयन के गीत के मांग करत हवन। उनकर दूगो बहिन है इंदिरा और शारदा, दूगो सखी नीला और प्रतिभा, संगे हवन शोभा और गीता गजादर और जितना कोई सुने होला श्रोता लोगन हवन उन सब कोई खातिन त चला सोना नोयन के आवाज में रखल हा दुनिया बा चला बाजा बोल है गीत चलावब जा उनकर खातिन। आउरी हमर जो चचा ह का बोलब जैसे जैसे दिनवा जाता कपार में का जानी कहाँ से ओकर है सब बतवा चलावेता। कौन दिन भगवान के आगे बैठ के भगवान के भजन शुरू कर देलब, भगवान के बोलता प्रभु हम तो भोजन पकावे वाला मांगले रहली, तू तो मुंह पकावे वाला दे देलक, हमर भेजा पकावे वाला दे देलक, मीठी मीठी बतिया सुनावे वाला मंगले रली तो है कौन दे देलक, हमनी के तीखा तीखा भाषण सुनावे वाला एगो मेहरारू दे देलक, है अखियों में जन्नत दिखावे वाला मंगले रली तोहर से, है तो हमनी के अखिया दिखावत हवन। हम तो सोचले रही सुबह शाम जे फुलका हमनी के गरम गरम फुला के दे ऐसन मेहरारू मंगले रही तोहर से, है तो अपन मुखड़ा फुला के बैठे रहे सब पूरा दिन कैसे कर भगवान तू हमनी के बोला।
2: हा दुनिया बा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का
2: 9:33 होगल बाद जितना कोई रात के काम करत हवन बस ऐसने हिम्मत के साथ लगे रहिए डटे रहिए और जे राजो भीरी में बात गीतवा सुनते सुनते मजेदार संगे मूड बनाइते बनाइते और बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत सुनते चला और चला अगला गीत जो है गायत्री जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन अल्फोंस से बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन मेबक से साथ देवत हवन और उनकर भौजी हवन शकुंतला मोतायलोंग से और खास सखी गीता बाई और उनकर सब परिवार साथ देवत हवन चला गीता बाई आशा करब जा कि तू अच्छा हवा।

और हैजा पर है ये गीत लागी ना ही छूटे राम के गीत चाची ललिता कुशल खातिन भी चलाओ अब जादे त्रियोले से साथ देवत हवन और उनकर बहिन सुदेवी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन वाकवा देने से साथ देवत हवन ज्ञानी देवीना छोटी दादी प्रभावती भाई आत्माराम सुखलाल मौसी माला राम जियावन और सुदेवी जी हमनी के बोले तनी चला दा हमर दीदी ललिता खातिन सुनीता शोभा देवीना और मालेगा से हवन राम रतन परिवार चला हैजा पर विजय बंदन जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और अगला गीत उनकर पत्नी रेखा जेकलावेत से दोनों जन हमनी के संगे जुड़ गल हवन और तीन गो बहिन हवन चंदनी रेखा और बिंदु और नहीं चंदनी बिंदु और ही कुमारी रेखा तो पत्नी हवन और ही उनकर जितना संगतिया हवन उन सब कोई खातिन और लागी ना ही छूटे राम के है गीत करब जा जितना कोई खुशी हवन है गीत सुने के और ही जैसे भगवान के हिया चचा पूजा करलन त चाची धौगले चलाल चाची बोले जब इतना ही बुरा लगत है त घर से निकाल कहे नहीं दे था हमनी के त चाचा बोले तो हम निकाल देव अब तू चल जाबे का त चाची बोले कबो नहीं जाब त बोले त काहे बोलत हव त चाची बोले बस ऐसने हमनी के बहुत अच्छा लगेला तोहरा चाकर भी हम तू हमर कुछो बिगाड़े नहीं सकब हैया है जा बैठब तोरा घर में तोहर छाती पे बैठ के मूंग दला ऐसे ऐसने बैठे रहब देखला हमर चाची भी बहुत होशियार हो गल हवन चचा चाची के किस्सा अतनी प्यार से गीत गाइया हो लागे ना ही छूटे राम है गीत

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला 9:40 हुआ था और ये अगला गीत जन है चाची शांता सुकाखी जी हमने के साथ देवा थवन से जमील फॉरेस्ट साइड से और अगला गीत के मांग कर ले हवन उनकर चार को बेटा खातिन जिमे हवन अशोक सुजीत गाविन और सुदेश भैया चला खुशी खुशी बहुत अच्छा लगेला उनका अपन नाम सुने के और पतो हवन किरण संगे हवन हैजा पर नाती प्रवेश और नातीन संजना और सुनीता नन्कू के आवाज में रखला ही अगला गीत चमेली चमेली है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और खास कर सुदेश भैया खातिन जे बहुत खुशी रहेलन भोजपुरी गीत के कार्यक्रम सुने के त चला बहुत मजेदार गीत बा और अगला गीत जो है सब कोई खातिन और है जन पप्पू भैया है ना कौन दिन अपन पिताजी से बोले पिताजी पिताजी आप कितना अच्छा हुआ हो माताजी कैसे तोहर से भेंट कर गई ल नैसन तो पिताजी बोले हाँ जाने ला तोहर माँ जोन रहल ना उ तोहर माँ बचपन में श्रावण के बहुत व्रत रख ले रहन श्रावण मास के सोमवार के व्रत कर ले रहन उही से हम ओकरा मिल गई तो बोले तू काहे तनी व्रत नहीं कर लग तनी व्रत कर ले तक तक तोहरा भी अच्छा पत्नी मिलत ना पिताजी ऐसन पत्नी मिल गल तोहरा हमनी के रोज मारेलन

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बार रेडियो मॉरिशस और ये रेडियो मनोरंजन पर चला अगला गीत जो हाथ जो बेदाल लो तो लेके जाए रंभा राम तोहल के आवाज में और हाई हाई जो गीत था अमृता गणेश जी खातिन चलाओ अब जा पीतों से उस साथ देवा थवन और खासकर आज के जो गीत था उनका बेटा विषम के ओर से चलाओ अब जाओ उनकर पत्नी मीनाक्षी बहन हवन पूनम और दू गो प्यारी बेटी हवन सोनिया और ही परी तो चला अगला गीत जरूर उनकर खातिन चलाओ अब जा और ये तोरा नाचे के मन करता तनी कमरिया हिला द कहे कि हमर जो चाची है ना कबो कबो ऐसन ताव में चलावेला ऐसन ऐसन गीत गा देवेला का जनी ओकर कपार में कैसे गीत चलावेला और गीत तो सुन ले हवा ना मिलो ना तुम तो हम घबराए चाची चाचा खातिन है गीतवा चला दिलक जाने लसल मत चाची के वेशों कैसन रहल चाची गावे मिलो न तुम तो हम घबराए मिलते ही क्लेश हो जाए हमको क्या हो गया है हमको क्या हो गया है अरे चाची गल्ला ठीक नहीं बा काहे गल्ला फाड़ फाड़ के ऐसे गावत हो चाची

0: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बार 9:55 हो गल बा और इचल अगला गीत चलाओ अब जा युधिष खातिन जी अभी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर मामा हवन शीला और जितना उनकर खुजाए खुजीन लोग उनकर से भेंट करे आल हवन उन सब कोई खातिन और बस रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर नीरज गुप्त मधु की आवाज में रखल हाई अगला गीत और हमर चचा जाने ल बोले देखा हाई जोन पति जोन रहेला ना वो बहुत भोला रहेला ओकर दिल बहुत विशाल समुंदर नियर रहेला और वो हमेशा चाहेला कि उनमें ढेर मछली फुदक फुदक के नहाए पर हाई जोन पत्नी है ना हाई पत्नी हा वो सार्क नियर हा वो गैके नियर हा गैके नियर वो तो हमेशा चाहेला कि वो हाई बुढ़वा के दिल में वो ही खाली राज करे दूसर मछे लोग के हुआ नहीं रहे दहे देवेलन सर जाने ल का हो चचा चला सुना है बढ़िया संगीत नीरज गुप्त मधु के आवाज में और मजेदार गीत संगे तनी थपरी।

चतुर नार हम छोड़े नहीं।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना,
1: एक चतुर ना।